0: ਬੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: हनी, ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

वेलकम बैक। इस गाने के इस पार एक बार फिर से सताक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ सुन रहे हैं आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस को। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। या इन्हीं हौसलों को बस बरकरार रखने की ज़रूरत है। यू नो, कभी कभी ना लाइफ में कुछ फेलियर आता है या लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं या स्टक हो जाते हैं या कोशिश करते हैं बट कुछ नहीं अच्छा होता, तो अक्सर आपका जो पेशेंस है वो आपको जवाब दे देता है। लेकिन आपको अपने हौसलों को जिद्दी बनाना है। आप ट्राई करते रहिए, अपने बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहिए, आप देखेंगे कि जीत आपकी होगी। भला आपके अलावा किसी में हिम्मत है कि वो जीत सके? तो बस अपने वर्क स्ट्रेस को थोड़ा सा डस्टबिन में डालिए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए अपने बुलंद हौसलों के नाम ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आप इट हैपेंस।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो इट हैपेंस, आपकी अपनी मॉर्निंग आरजे सताक्षी के साथ। तो चलिए बात की जाए आपकी हेल्थ की। ना ना, जब मैं आपसे हेल्थ की बात करने चलती हूँ तो आप परेशान हो जाते हैं कि सताक्षी क्या ही बताएगी। देखिए देखिए देखिए, हेल्थ से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उबली हुई सब्जी खाने के लिए कहने वाली हूँ या कीटो डाइट के फायदे गिनवाने वाली हूँ। ना बाबा ना, वो तो मुझसे भी नहीं होती तो मैं आपको क्या कहूंगी। आज हम बात करेंगे नो गिल्ट हेल्थ की। जी हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि हम अक्सर मंडे को जिम जाने की कसम खा लेते हैं और वेडनेसडे आते आते पिज्जा देखकर पिघल जाते हैं। फिर क्या होता है, हम खुद को कोसने लगते हैं, अरे यार मैंने तो डाइट पे रहने की कसम खाई थी, मैं कभी अपनी डाइट फॉलो ही नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, मैं चीजें देख कर ही ना उनको खा लेती हूँ। यही कहते हैं ना, अरे भाई खा लिया पिज्जा, इट हैपेंस, हो गया ना। अब उसकी गिल्ट में पूरा पूरा हफ्ता वर्कआउट ना करना, ये तो बेवकूफी है। हेल्थ का मतलब सिर्फ सिक्स पैक एब्स बनाना नहीं है, हेल्थ का मतलब है कि आप अंदर से कितना खुश और एक्टिव महसूस कर रहे हैं। तो अगर पिज्जा खा भी लिया है, बर्गर खा भी लिया है बाय चांस, अब ये मतलब नहीं है कि आप तुरंत पहुंच जाएं, है ना, तो लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज कर लीजिए, 15 मिनट की 20 मिनट की वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए, वक्त मिले तो प्रॉपर एक्सरसाइज कर लीजिए, बस, है ना। तो नो गिल्ट जोन में रहना बहुत जरूरी है। आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ कुछ गहरी जज्बात और गहरी बातें इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं और बांट रहे हैं। आई होप कि आपको भी ये शो सुनकर बहुत मजा आ रहा होगा और आप भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। वैसे फिजिकल हेल्थ जितनी जरूरी है ना, जिसकी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आज इस सुबह आपका मूड बिना किसी वजह से थोड़ा ऑफ है या आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तो किसी कोने में जाकर लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपने किसी दोस्त को फोन मिलाइए और बकवास बातें ही सही, लेकिन उसके साथ बातें कीजिए। हंसना सबसे बड़ी थेरेपी है दोस्तों। अगर आज जिंदगी आपको नींबू दे रही है तो उसकी शिकंजे बना लीजिए और चिल करिए, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। और चलिए आगे बढ़े, एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। इट हैपेंस में आपके साथ हो रही हैं आपकी और मेरी और हमारी जज्बातों की कुछ खूबसूरत और प्यारी बातें। इस मॉर्निंग ये साथ बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल हो गया है। भाई क्यों ना हो, जिस साथ पर हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, वो साथ तो परफेक्ट ही होता है। देखिए, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जब दो लोगों की एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती है, तो वो जब साथ होते हैं तो वो साथ, वो सफर, वो बातें, वो एहसास सब कुछ खास हो जाता है, है ना। तो बस इसी एहसास के नाम एक और ट्रैक सुनवाऊंगी आपको, भी एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस आपका अपना ब्रेकफास्ट।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only.
0: 32268 उते कॉल करो। ये सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

लकीरें तो हमारे हाथों में भी बहुत खास हैं। लकीरें तो हमारे हाथों में भी बहुत खास हैं, तभी तो आप जैसे दोस्तों का प्यार हमारे पास है। और शिकायतों का दौर तो चलता ही रहेगा जिंदगी में, शिकायतों का दौर तो चलता ही रहेगा जिंदगी में। चलो आज जो पास है उसी में खुशियां ढूंढते हैं, चलो आज जो पास है उसी में खुशियां ढूंढते हैं। जी हाँ, शिकायतें और ख्वाहिशें जिंदगी में ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन आज जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना, उसके लिए थैंकफुल होना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना, उन लोगों से प्यार करना और उन्हें ये बताना कि उन्होंने आपकी जिंदगी को कितना स्पेशल बनाया है, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, यार जिंदगी यही तो है। और इसी जिंदगी के नाम एक अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: drop the bird.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखा

और वक्त हो गया है आज के इस खूबसूरत से सफर को हमारे आपके साथ को यहीं पर समेटने का। और जाते जाते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, कोई गलती हो जाए या कोई काम ना बने, एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और कहिए इट हैपेंस और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिंदगी ठहरने का नहीं आगे बढ़ने का नाम है। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी 101.1 ते जीआर जी संदेश अलग दे नाल बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो बरसानी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी, bersani@bersani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे नाल गल्लां बातें करनिया। तो चको तो अपना फोन से साथ गल बात करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं तो आनी हूँ, बस हूने आनी हूँ वापिस। उन्होंने समा तुम सुने जी गीतों इंजॉय भी करो।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101 ते जी आरचे संदेश चालक दे नाल बने हुए हुणे ना फिल्मां दे विचों जिहड़ियां पूरी दुनिया दे विच छाईयां हुईयां ने, तां इह जिहड़ी लिस्ट मैं फरोल रही हां ते इस विच सब तों पहला नाम जिहड़ा आउंदा है उह हैगा बूंग। जी हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी दे निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंगे फिल्म दा नाम। ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म दा अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे दी कहानी है जो अपने पिता दी तलाश विच निकलदा। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतीआं नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है, जो बहुत वधिया लगती है क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना, वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

हाँ जी तो वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वन सन वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच जिहड़ा हैगा है वह हैगा जी होमबॉर्न दा। नीरज गायवान वालों निर्देशित फिल्म ईशान खट्ट विशाल जेठवा जानवी कपूर दी हैगी है। तीनों इस लीड फिल्म दे विच लीड रोल दे विच ते मार्टिन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस दे। ए ना बचपन दे दो दोस्तां जिन्हां दे विचों एक मुस्लिम हैगा ते एक दलित समुदाय दे नाल हैगा है तां उन्हां दी दोस्ती साहत ते जाति राजनीति दी कहानी हैगी है। ए भारत दी अधिकारित एंट्री सीगी 88वें ऑस्कर दे लई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर दे विच शॉर्टलिस्ट हुई पर नॉमीनेशन नहीं मिलिया। ए धर्मा प्रोडक्शन वालों बनाई गई हैगी है ते 26 सितंबर नू रिलीज हुई सी।

0: गो फॉर द बेस्ट वीरे अतुल भारद्वाज जी नो अजी कॉन्टैक्ट करो ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नो हैंडल करंज भी ओ एक्सपर्ट हन क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ एंड द बेस्ट पॉइंट They understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
5: यार, आई एम सो वरीड। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
4: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
5: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सर वाने हम ते जी आर चे संदेश चालक दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म थोड़ी जी पिछे जाने हैं 2015 दे विच। वो फिल्म का नाम है मसान। नीरज गायवान दी डेब्यू फिल्म वाराणसी विच दो कहानियां देवी जिस जो रिचा चड्डा बने से ते दीपक जो विकी कौशल बने से थी सामाजिक दबाव ते मुक्ति दी खोज ये है की है। 2015 दे कांस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते जिस विच FIPRESCI अवार्ड्स अते प्रोमिसिंग फ्यूचर प्राइज सीगा। वाराणसी दी उत्थे जमीन ते बनी इस फिल्म विच रिचा चड्डा ते विकी कौशल ने यादगार एक्टिंग कीती है। विकी कौशल दी किस्मत इस फिल्म दे नाल चमकी सी।

0: मेनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो
1: जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वंसन वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली फिल्म है की ऑल दैट ब्रीथ्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है, बट नो नो नो नो नो नो, ये हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है। 2023 ऑस्कर दे लई नॉमीनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं कि ने। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड जूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि ने। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
11: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
12: Hey, Sean.
13: ਉਹ ਤੰਦੀ ਖਿੱਤੀ ਆਪਣ ਨੁੱਕ ਦੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਖ

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिन से बने हुए। इस तो बाद अगला जिहड़ा नाम है इस लिस्ट विच वो है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म। ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नूं करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्गिया हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दस दिंदी आ, वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंडू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध दी कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद कीता गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी, राधिका आप्टे ते सुरविंद चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी की राह तलाशदियां हैगियां ने।

तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: भैरतमान कोल दो ही चीजा हुंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव खरोड़ इन एंड एज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। और सबसे पहला सवाल यही है आपसे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, ट्यूसडे का दिन यानी कि मंगलवार का दिन है और मैं तो यही आशा करती हूँ, मैं ही यही होप करती हूँ कि आप सबके साथ सब कुछ एकदम मंगलमय रहे। और यही इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही हेल्दी और अच्छे रिचुअल के साथ। एक ऐसा रिचुअल जो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में, वो भी बहुत ही काम माइंड से, फोकस्ड माइंड से और एकदम प्रोडक्टिव माइंडसेट से। जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। सो आइए उसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी हाँ, एक्सक्यूज द साउंड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम माई नोज बिकॉज मुझे कोल्ड हुआ था 2 दिन पहले, बट ठीक होने की कगार पर है। बट उसके अलावा आपको ये चीज़ करनी है और फिर देखिए आपको कैसा फील होता है। और ये आपको सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली हेल्दी रखता है। आप एक्सरसाइज करते हो ताकि आप फिजिकली हेल्दी रहो, लेकिन मेंटली हेल्दी रहना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो हमेशा ध्यान रखिए। और मुझे पता है कि बहुत केओस है इस पूरी दुनिया में, सो इस केओस को आप अपने अंदर तक ना जाने दें, इसके लिए ये डीप ब्रेथ एक्सरसाइज आपकी हेल्प कर सकती है बहुत ही अच्छे से। सो ये कीजिए और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करना चाहते हैं फिर तो डेफिनेटली कीजिए। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अब बड़े ही खूबसूरत गाने के साथ। और गाने का नाम है कैसी पहेली जिंदगानी। नाउ कैसी पहेली है ये पहेली जिंदगानी, एग्जैक्टली उसी गाने, बिल्कुल देर किए बिना। करते हैं प्रोग्राम को इस खूबसूरत से गाने को और फिर करते हैं और बहुत सारी गपशप।

जी हाँ दोस्तों, पैशन की बात हो और कोई पैशन से गाना बनाए, वो भी बहुत ही ज्यादा पैशनेट, तो ये गाना जो है उसका शीर एग्जांपल है और उस पर कोई भी दौर आए नहीं है। चलिए इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है तो आपको पता है मौसम के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी प्लानिंग्स होती हैं और वो प्लानिंग्स कितनी कामयाब होने वाली हैं मौसम के फ्रंट पे, आइए वही तो हम आपको बताने आए हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर से बात करते हैं और 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अभी की अगर बात की जाए तो 22.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है और आपको फील 19.8 डिग्री सेल्सियस के करीब हो रहा है, विच इज क्वाइट क्वाइट ठंडा। जी हाँ, और इसी के साथ अगर रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आप रात में देख पाएंगे, जो अभी तक सबसे ठंडी रात होने वाली है। सो गियर अप फॉर दैट। एंड यहां पर कोई चांसेस ऑफ बारिश नहीं थे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था मौसम है सुहाना और साथ में आपको एयर क्वालिटी भी एकदम फेयर मिल रही है। सो बाहर निकलिए, आई नो थोड़ी ठंड है, बट अगेन इसी के साथ वेडनेसडे की अगर बात की जाए तो बारिश आने के चांसेस हैं 40% विद 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। बट यहाँ पर मुझे सूरज भी बहुत ही खूबसूरत सा निकला हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपको भर भर के धूप मिल सकती है, लेकिन बीच में कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रेन वेरिएबल। एंड थर्सडे की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम और 30% चांसेस है बारिश होने के, पर मुझे बादल दिख रहे हैं और बारिश भी दिख रही है, बट बादल या कल मुझे इतने बादल नहीं दिख रहे, लेकिन परसों यानी कि थर्सडे को मुझे बादल दिख रहे हैं। सो इसके लिए रेडी हो जाइए और आज ठंड होने वाली है रात को काफी, अपने आप को कोजी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है मौसम का हाल, अब जरा सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गाना।

जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। हे देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: वधेरे किफायती रिहायश दी शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 billion दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों इलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निव्या के साथ। सो दोस्तों, यहाँ पर अब जरा चलते हैं सीधा आपकी फरमाइशों की तरफ। मतलब हमने आपको मौसम की जानकारी दे दी, गजब के खूबसूरत गाने भी आपको सुनाने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स प्रोग्राम की शुरुआत भी हो गई है, और वो भी सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि खूबसूरत शुरुआत हो गई है। अब जरा चलते हैं आपकी फरमाइशों पर, यानी कि वो गाने जो आपको पसंद है और वो आप यहाँ हमारे इस प्रोग्राम में प्ले करवा सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम खास है, इसमें आपकी फरमाइशें हैं जिससे और भी ज्यादा खास बनाती हैं। जी हाँ, सो अपनी फरमाइश को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कोई गाना अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हो आप, तो आपको एक नंबर डायल करना है, और वो नंबर है +91 82 888 71 701। आई रिपीट, +91 82 888 71 701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और इनफैक्ट अगर चाहते हैं आपको ये गाना किसी को डेडिकेट करना और उन्हें स्पेशल फील करवाना, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड वी आर गोना हेल्प यू विद दैट ऑन द प्रोग्राम इवनिंग वाइब। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए। और यहाँ पर हम अपना पहला फरमाइशी गीत प्ले करने के लिए तैयार हैं, जो कि आया है आयुष शर्मा जी की तरफ से। जी हाँ, आयुष जी की तरफ से, बहुत खास लिसनर है हमारे, उन्होंने किया है ये गाना फरमाइश। गाने का नाम है तो से नैना मिले। जी हाँ, जब से मिले बन गए सिलसिले। तो से नैना जब से मिले बन गए सिलसिले, क्या बात है, क्या खूबसूरत गाना है, राइट। थैंक यू सो मच आयुष जी, हमेशा की तरह प्यारी प्यारी खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए हमारे प्रोग्राम को, ऐसे ही सुनते रहिए। और मेरे बाकी के लिसनर्स, आप भी आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ। और ये रहा आयुष जी, आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जिसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है. ऑफ कोर्स इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि हम इसके बारे में जान भी नहीं सकते. आप अगर फीफा के फैन हैं और आप फीफा को देख रहे हैं पूरी तरह से, जो है फीफा का मजा ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि फीफा जो है वो पैसे इकट्ठे करने का एक और सोर्स ढूंढ लिया है फीफा ने. आप लोग बोलोगे कि हाँ बात तो सही है. जब से उन्होंने मेडल ऑफ फ्रीडम जो है और नोबेल प्राइज ऑफ फीफा कम्युनिटी जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, हमें फीफा पर ज्यादा भरोसा बचा नहीं था. वेल, आपको ही नहीं, मेरे मुझे भी नहीं बचा था. बट द थिंग इज कि यहां पर फीफा जो है वो सेल कर रहा है पीसेस ऑफ द ग्रास दैट विल बी यूज्ड फॉर द 2026 वर्ल्ड कप फाइनल एट मेटलाइफ स्टेडियम इन न्यू जर्सी फॉर $450 पर पीस. जी हाँ, आपने सही सुना. सो जो ग्रास पीसेस जो है जो यूज होने वाले हैं और जो होने वाले हैं अभी कुछ दिन में इसके फाइनल के लिए, जो फाइनल होने वाला है फीफा का, उसके फाइनल के लिए जो ग्रास पीसेज यूज होने वाले हैं स्टेडियम में, उनको फीफा सेल कर रहा है $450 पर पीस पे. जी हाँ, अब आपको मैं बता दूं कि जुलाई 19 को जो है ये होने वाला है फाइनल, और ये पीस जो है वो प्रिजर्व किया जाएगा इन अ प्रीमियम एक्राइलिक, और जी हाँ एक्राइलिक में, और यहाँ पर इसे जो है वो फिर भेजा जाएगा उन एड्रेसेस पे जिन लोगों ने इसे बुक किया होगा. सो बेसिकली जिस स्टेडियम पे, जिस घास पर, जिस ग्रास पर ये मैच खेला जाएगा फाइनल फीफा का, वो ग्रास जो है वो बेची जा रही है, उसके पीसेस जो है वो बेचे जा रहे हैं. एंड यू कैन बाय इट, but no you can't actually, but only the people who are in Europe or US can buy it. मतलब जो यूरोप के लोग हैं, जो यूएस के लोग हैं, वही इन पीसेस को खरीद सकते हैं. इनके अलावा और कोई भी इनको नहीं खरीद सकता. आपको मैं बता दूं कि ये जो सेगमेंट होंगे इस टर्फ के, वो 7.5 by 7.5 by 7.5 के तहत रखे गए हैं. ऑल्दो इसके अलावा ये नहीं बताया गया है कि ये इंचज में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा या मिलीमीटर्स में होगा. डायमेंशन कैसे होंगी इसकी, nobody has told the fans yet. But the thing is कि यहां पर FIFA, you can literally have and keep the piece of that FIFA final World Cup. And yeah, but of course we can't do that. Only the people who lives in Europe and US can do it. So yeah, I have listeners in from US. They can do it. So I guess उनके लिए तो अच्छी बात है. पर क्या आपको लगता है कि ये चीज़ अगेन फीफा का पैसे कमाने का तरीका है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है शायद, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि हर एक चीज़ से पैसा कमा लेना चाहिए, हर एक चीज़ से. आई गेस दैट्स वाई दे आर डूइंग इट. या टेल मी योर थॉट्स, आपको क्या लगता है इसके बारे में. और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Samsung ki mala pe sim room hai.
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
6: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी दोस्तों, कभी आपने ऐसा सोचा है या कैसे कभी ऐसा बोला है कि कहीं से छप्पड़ फाड़ के सोना आ जाए तो मजा आ जाएगा, या फिर कभी ऐसे बोला होगा कि कहीं छप्पड़ फाड़ के कहीं से पैसा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वेल, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो बोला होता है, राइट? अब ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वेल आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। लेकिन आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निविया, और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है और आपकी फरमाइशें हैं तो और भी खूबसूरत जो है उसमें आलम जो है वो आ रहा है। जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि कभी अगर आपने बोला हो कि कहीं एकदम छत से एकदम पैसे गिर जाएं आपके ऊपर तो मजा आ जाए, सोना आके छप्पड़ भाड़ के गिर जाए तो मजा आ जाए, वेल साइंटिस्ट कुछ ऐसा ही स्टडी कर रहे हैं जिससे कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप लोग बोलोगे कि निविया अरे इतना भी मत फेंको यार, मतलब ये क्या बात हुई, सोना गिर जाएगा, पैसे गिर जाएंगे आसमान से, ऐसा कहाँ होता है ना, ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है, मेटाफोरिकली लोग कहते हैं, ऐसा होता थोड़ी है। वेल साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं 16 साइकी, अ जाइंट मेटल रिच एस्ट्रॉइड जो कि ऑर्बिट कर रहा है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के, और अगर थियोरेटिकल वैल्यूएशन दी जाए तो इसमें 10 क्विंटिलियन डॉलर से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स हैं। लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स तो एक चीज है, सोना है इसमें, बहुत भर भर के सोना है, जी हाँ, और वो सोना जो कि आपको बहुत ही पसंद है। मतलब हमारे लिए तो सोना ऐसे होता है कि जब भी सोने की बात होती है हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, और वही सोना है उस पर, जी हाँ। तो जैसे मैंने कहा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस, वी आर टॉकिंग अबाउट क्विंटिलियंस, जी हाँ। सो ये जो है एस्टिमेटेड वर्थ जो है इसकी 10 क्विंटिलियन डॉलर है, और ये आयरन और निकल कॉन्टेंट से जो है वो बना हुआ है, एस्टिमेटेड जो है इसका जो कॉन्टेंट है वो आयरन और निकल है। सो ये जो फिगर है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो है अभी, रादर देन अ रियल प्राइस टैग, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये एस्टेरॉइड जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, जी हाँ, मतलब हमारे पास नहीं है, धरती के आसपास कहीं नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में, जी हाँ। आप लोग बोलोगे कि ऐसे तो एस्टेरॉइड्स धरती के आजू बाजू आते रहते हैं, अब ऐसा कोई एस्टेरॉइड क्यों नहीं आता है जिसमें सोना चांदी भरा हो और वो धरती से टकराए भी तो एटलीस्ट हम अमीर तो हो जाएं। अरे भाई, एस्टेरॉइड टकराएगा तो अमीर नहीं होंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, जी हाँ। सो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ऐसा सा एस्टेरॉइड कोई धरती से आके टकरा जाए तो मजा आ जाए, मतलब एकदम जो हम कहते हैं कि एकदम आसमान से कहीं सोना चांदी बरस जाए, वो बरसेगा, लेकिन हमारी जान पे बरसेगा, जी हाँ। सो एस्टेरॉइड्स को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, एस्टेरॉइड्स वही चीज है जिन्होंने डायनासोर तक को खत्म कर दिया था। सो आप एस्टेरॉइड को हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, ये एस्टेरॉइड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा कि ये जो 10 क्विंटिलियन डॉलर से ज्यादा वर्थ ऑफ मेटल्स हैं इसमें, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम रियल मेटल्स लाइक सोना चांदी हीरे ज्वारात, या सो अगेन ये कब हमारे धरती के पास आएगा आई हैव नो क्लू, बट साइंटिस्ट आर स्टडिंग। अब आप लोग बोलोगे ठीक है, अगर ये हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम इसके पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ करें, मतलब हमारी नासा और हमारा इसरो जो है और हमारी बाकी स्पेस एजेंसीज जो है वो इतना आगे पहुंच गई हैं, हम तभी मानेंगे आगे इनको, तभी मानेंगे इन्होंने तरक्की की है जब वो एस्टेरॉइड से सोना चांदी लूट कर लाएंगे। बात तो सही है भाई, बात में दम है, जी हाँ। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने कुछ पढ़ा एंड आई वाज लाइक या दिस इज मेकिंग सेंस। और मुझे लगता है कि हमें ना ये चीज बोल देनी चाहिए उन लोगों को जो हमें इरिटेट करने की कोशिश करते हैं। सो आपको अगर कोई इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि आपको बॉदर कर रहा है और आप सोच रहे हो इसको कैसे चुप करवाऊं, तो आप ऐसे लोगों को ये बोल सकते हो जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, ऐसी सलाहें तुम देती रहा करो क्योंकि This world is filled with irritating people. And there are good people, but बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको इतना बॉदर करते हैं, कि हमें लगता है कि कभी कभी उन्हें किसी दूसरे प्लैनेट पे भेज दे। But of course, we can't do it. But you can with your sarcastic tone and this. जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आप कह सकते हो इफ आई गेट ट्रिगर्ड, जी हाँ मोहतरमा या बरखुरदार जो भी आपको कर रहे हैं, आप कह सकते हो इफ आई गेट ट्रिगर्ड आई स्टार्ट टॉकिंग पॉइंट टू पॉइंट एंड इट विल हर्ट द पर्सन एंड यू जॉइंट टू जॉइंट। जी हाँ, अगर कोई आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे एग्जैक्ट कुछ कुछ नहीं बोलना चाहते हो, तो आप सिर्फ इतना बोल दो कि अगर मैं ट्रिगर हो गया, इफ आई गेट ट्रिगर्ड आई स्टार्ट टॉकिंग पॉइंट टू पॉइंट एंड यू विल हर्ट एंड इट विल हर्ट यू जॉइंट टू जॉइंट। सो मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा और वो तुमको जॉइंट टू जॉइंट हर्ट करेगा, तो तुम मुझसे पंगे मत लो, दूर रहो। जी हाँ, आप हमसे पंगे मत लो, दूर रहो, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हें जॉइंट टू जॉइंट हर्ट होने वाला है। दैट्स ऑल यू नीड टू से, और फिर वो सामने वाला इंसान आपको परेशान नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा और कुछ ऐसा नहीं बोलेगा जो कि आपको बॉदर करेगा। जी हाँ, मतलब आपको यू नो यू शुड कॉल आउट द पीपल जो कि आपको परेशान करते हैं। सीधी सी बात है, दिस वर्ल्ड इज कैन बी अ बेटर प्लेस अगर हम लोगों को कॉल आउट करना शुरू कर देंगे, बट ओनली जो कि गड़बड़ करते हैं। देयर आर मेनी गुड पीपल ऑल्सो, बट या ये वाली लाइन जरूर मारिएगा अगर आपको कोई करता है इरिटेट, और अगर आप मारने वाले हैं ये वाली लाइन तो जरूर मुझे बताइएगा कि आपने इस्तेमाल किया है इस लाइन का। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
16: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब चलते हैं सीधा खबरों के सिलसिला शुरू होने वाला है. खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM और शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्चे निव्या के साथ. दोस्तों खबरों की बात होने वाली है, मतलब दुनिया की बात हो रही है, वॉर फ्रंट की बात होगी और बात होगी बहुत सारी चीजों के बारे में. जी हाँ, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ईरानी हमले में भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई है और इंडियन एम्बेसी ने इसके बारे में कुछ कहा है. वहीं यूएई ने भी कहा है कि दो जो है वो तेल टैंकर्स पर, जो तेल के जो टैंकर जा रहे थे, जो वेसल जा रहे थे, उन पर ईरान ने हमला किया है. इसके बारे में और भी बात करेंगे लेकिन पहले हम आपको एक गाना यहाँ पर सुनाने वाले हैं.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और जरा बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ईरानी हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई और इंडियन एम्बेसी ने इसके बारे में कुछ कहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात के दो तेल टैंकरों पर मंगलवार को ईरान ने मिसाइल हमला किया जिसमें एक भारत क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस हमले में 6 भारतीयों समेत 8 अन्य लोग घायल हुए हैं। यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस संबंध में बयान जारी करते हुए भारतीय क्रू मेंबर की मौत पर शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने लिखा कि दो जहाजों पर हुए हमले मैं एक भारतीय नाविक की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। हम हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं और घायलों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। जी हाँ, यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके टैंकर मोबासा और अल बाहिया को ईरान की ओर से दागी गई दो क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया। हमला हॉर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ। मंत्रालय ने बताया कि मोम्बासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई, वहीं 8 लोग वहां पर घायल भी हो गए हैं।

जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और यूएई के दावे के साथ हूती विद्रोहियों का भी दावा हुआ है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया है। जी हाँ, यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सोमवार को सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। हूती संगठन के मुताबिक इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हूती विद्रोहियों ने बताया कि यह कार्रवाई सऊदी अरब की ओर से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारेया ने बयान जारी कर सभी एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। हूती प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक यमन की राजधानी सना स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी पाबंदियां खत्म नहीं हो जाती। वहीं सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया ताकि एक ईरानी विमान को वहां उतरने से रोका जा सके।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम जॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम जॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, a professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
7: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
8: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
7: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
8: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
7: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
8: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
9: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
10: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
11: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्शेनिविया के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और वहीं फिर से टैरिफ की बात आई है हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए। जी हाँ, सो ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि ट्रंप जो है और अमेरिकी सरकार जो है वो 20% शुल्क जो है वो वसूलेगी, 20% टैरिफ जो है वो लगाएगी, जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं उनको सेफली वहां ईरान के हमलों से बचाकर निकालने के लिए। अब यहां पर यहाँ पर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो जहाजों पर 20% शुल्क लगाने के बयान के बाद ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने ट्रंप के बयान पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सही है, लेकिन 20% शुल्क बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ईरान उचित और संतुलित शुल्क वसूलेगा। अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही है, जो भी कार्गो शिप्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित और आसान रास्ता देगा उससे सेवा के लिए शुल्क मिलना चाहिए। आगे कहा कि ईरान हमेशा से स्ट्रेट का रक्षक रहा है और हमेशा रहेगा। 20% शुल्क ज्यादा है, हम उचित शुल्क लेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ही कहा था कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाजों से 20% शुल्क वसूलेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह भी दावा किया कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से लागू भी करेगा।

जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले एक और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई, और वो दिलचस्प चीज थी नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच हुआ फुटबॉल मैच। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है उसका रिजल्ट क्या रहा है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि उसका रिजल्ट मैं लिटरली एक्सपेक्ट कर रही थी कि नॉर्वे जीत जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द अर्लिंग हॉलैंड। मतलब दैट पर्सन इज मैजिक, मतलब ही इज जस्ट सो अनकरप्टेड। मतलब आप उनके इंटरव्यू सुनोगे तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, आप उनकी बातें सुनोगे तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, मतलब ये इंसान बिल्कुल भी मैला नहीं है। या दैट्स हु अर्लिंग हॉलैंड इज। सो यहाँ पर जब नॉर्वे और ब्रिटेन का मैच हुआ, ऑफकोर्स नॉर्वे उस मैच में हार गया और ब्रिटेन जो है वो जीत गया, लेकिन लेकिन लेकिन जब ये मैच होने वाला था तो यहाँ पर नॉर्वेगियन एयरवेज ने जो है एयरलाइंस ने एक शर्त प्रपोज की ब्रिटिश एयरलाइंस के लिए, और उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री जीतेगी ये वाला मैच वो अपने लोगों को स्वैप करेगी, वो उस कंट्री का लोगो जो है वो लगाएगी। मतलब अगर नॉर्वे की जैसे कि हारती है टीम तो वो ब्रिटिश एयरलाइन का लोगो जो है वो अपने जो है वो लोगो में लगाएगी, मतलब वो अपना लोगो नहीं लगाएगी, ब्रिटिश एयरलाइन का लोगो लगाएगी, और है वो एयरलाइन नॉर्वे की। लेकिन लेकिन लेकिन अगर ब्रिटेन हारता है तो वो नॉर्वे एयरलाइन का लोगो जो है वो ब्रिटिश एयरलाइंस अपने लोगो में लगाएगी, और यही शर्त उन्होंने रखी। लेकिन ऑफकोर्स इसका रिजल्ट तो वही था, रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्वे हार गया और वहां पर ब्रिटेन जीत गया, और सच में नॉर्वेगियन जो एयरलाइंस थी उन्होंने ब्रिटिश एयरलाइन का लोगो जो है वो लगाया, उस बेट को जो है वो पूरा किया। और सच में जब ये बेट लगी थी एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट इट। मतलब फुटबॉल को तो लोग फॉलो कर ही रहे थे, फीफा के बारे में तो बात हो रही थी, लेकिन इस बेट के बारे में जितनी बात हुई है ना, आई डोंट थिंक फीफा का और कोई मोमेंट जो है वो इतना डिस्कशन वाला रहा है। सो ऑफकोर्स अगेन, जैसे कि नॉर्वे हार गया और ब्रिटेन जीत गया, लेकिन एक बहुत ही फनी चीज यहां पर हुई जब उनसे पूछा गया कि ओके 28 साल बाद, या आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हॉलैंड, जब उनसे पूछा गया कि 28 साल बाद नॉर्वे जो है वो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कहते ठीक है 28 साल बाद पहुंचेगा, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं खुद 25 साल का हूं, मतलब ठीक है मुझे लगता है मैंने अच्छा किया है, मैं 25 साल का हूं, 28 साल बाद जो है पहुंची है तो मैं तो खुद ही 25 साल का हूं, मैं इसका जिम्मा कैसे ले लूं। एंड अर्लिंग हॉलैंड की स्टेटमेंट के बाद जो होस्ट था, जो इंटरव्यूअर था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलू, क्योंकि ऐसी मीडिया ट्रेनिंग तो किसी भी सोकर प्लेयर को नहीं मिली होती है, फुटबॉल प्लेयर को नहीं मिली होती है। दैट इज वाई वी से अर्लिंग हॉलैंड इज सो अनकरप्टेड, मतलब वो करप्ट है ही नहीं, ही जस्ट सेज एनीथिंग, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक पीपल हैव बिकम रियल फैन ऑफ अर्लिंग हॉलैंड एंड इंक्लूडिंग मी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: Samsung ki mala pe simroon main LKR event।
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों यहाँ पर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउस ऑफ द ड्रैगन, या एक ऐसा शो जिसने सबको अपने अराउंड ऐसे लपेट के रखा है कि लोग ना तो इसे छोड़ पा रहे हैं, ना इसे देख पा रहे हैं, ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा वाई सो ड्रामेटिक। वेल वेल वेल, हाउस ऑफ ड्रैगन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि हाउस ऑफ ड्रैगन जो है वो अपने तीसरे सीजन में है, 14 एपिसोड आ चुका है और वो आपको थोड़ा हंसा भी रहा है, थोड़ा रुला भी रहा है, और आई वुड से थोड़ा हंसा रहा है लेकिन ज्यादा रुला रहा है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू, बट अगेन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग हाउस ऑफ ड्रैगन, गो फॉर इट। ऑफ कोर्स यू कांट वॉच इट विद योर किड्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस शो इज रियली रियली रियली रियली ग्रेट। लाइक आई कांट रिकमेंड इट इनफ। नाउ आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, अगर हमें तुम्हारी पुरानी स्टेटमेंट याद हो तो तुमने कहा था कि हाउस ड्रैगन अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है जितना गेम ऑफ थ्रोन्स है। वेल ऑफ कोर्स कुछ चीजें जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जैसे हाउस ऑफ ड्रैगन का सेकंड सीजन आया, फर्स्ट सीजन खत्म हुआ, सेकंड सीजन आया, धीरे धीरे धीरे जो है ये लोगों के दिलों में घर कर गया है, एंड मैं भी उनमें इंक्लूडेड हूँ। सो ऑफकोर्स हाउस ऑफ ड्रैगन का तीसरा सीजन 14 एपिसोड आ चुका है, बहुत कुछ चल रहा है। ये है गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ, और आप कहें प्रीक्वल। जी हाँ, प्रीक्वल से मेरा मतलब यही है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के बहुत पहले की कहानी, मतलब 100 साल पहले की कहानी, जब क्वीन रेनेरा बैठती है किंग्स लैंडिंग की उस आयरन थ्रोन पे, वही आयरन थ्रोन जिसको लिटरली टारगेरियंस ने बनाया है, और टारगेरियंस ने उन 7 स्टेट्स को जो है वो ज्वाइन किया और फिर उसके बाद जो है उसको रूल किया। लेकिन यहां पर ये वो वाला वक्त है जब बहुत सारे ड्रैगन्स होते थे, देयर वर मेनी पीपल जिनके पास ड्रैगन्स थे, जो ड्रैगन माउंट करते थे, और बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन यहां पर भी बवाल वही है, कुर्सी का बवाल। मतलब पॉलिटिक्स की बात करें, पुराने राजा महाराजाओं की बात करें, हर जगह बवाल कुर्सी का ही है। लेकिन यहां पर ये कहानी जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले की कहानी है, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले की, और वहां पे कैसे हाउस ऑफ ड्रैगन, मतलब वो टारगेरियन हाउसहोल्ड, वो किंगडम कैसे रूल करता था, कैसे उनके पास ड्रैगन्स होते थे, और वही कहानी जो है वो आपको बताई गई है। सो अगेन, अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो जरूर चेकआउट कीजिए, एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ा आंसू बहाने के लिए भी रेडी रहना है, बिकॉज देयर आर सम सीन्स दैट गोना मेक यू सो इमोशनल दैट यू विल बी लाइक Oh my God, why am I even watching it? But it's really, really good. So, आप मुझे बताइए कि अगर आप follow कर रहे हो House of Dragon, क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया है ये जो अब कुछ episodes हुए हैं, और ये जो civil war चल रही है Dance of the Dragons, या Queen Rhaenyra and King Aegon के बीच में, Aegon the Second के बीच में, या do let me know your thoughts because I really want to know your thoughts। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट को शुरू करने का, और वो सेगमेंट है क्या? वेल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड इज गोल्ड। नाउ दिस सेगमेंट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड नॉट जस्ट माय बट माय लिसनर्स हार्ट टू। सो ऑफ कोर्स वी आर गोना प्ले सम रियली रियल रियल गुड सॉन्ग्स, एंड व्हेन आई से गुड सॉन्ग्स आई मीन पुराने वाले खूबसूरत गाने। जी हाँ, पुराने गाने, पुराने किस्से, ऑफकोर्स सिर्फ गाने नहीं होंगे, किस्से भी होंगे जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइशों के साथ, क्योंकि शर्त तो वही है, सेगमेंट है पुराने गानों का, तो आपकी फरमाइश भी होनी चाहिए पुरानी, तभी तो बात बनेगी। आ जाइए जल्दी से। और इसी के साथ यहाँ पर जो पहला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ इस सेगमेंट का, वो बहुत ही खूबसूरत है, और ये गाना जो है, पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे लोगों को पसंद है। एंड इस गाने में सबसे अच्छी चीज़ पता मुझे क्या लगती है? जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से इसके लिरिक्स लिखे गए हैं, इसके लिरिक्स में कॉन्फिडेंस है कि जाइए, आप कहाँ जाएंगे, लौट के तो वापस इधर ही आना है। सो आई लव द कॉन्फिडेंस ऑन द इन द लिरिक्स, एंड ऑफ कोर्स जैसे जिस तरीके से इसे गाया गया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, एंड क्योंकि इसे आशा जी ने गाया तो वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, जब हैंडसम और गुड लुकिंग हीरोज की बात होती है ना, तो विनोद खन्ना का नाम बहुत ऊपर आता है। जी हाँ, मतलब लड़कियां ही नहीं बल्कि उनकी को एक्ट्रेसेस भी उनकी दीवानी थी। और मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम ले सकती हूँ, लाइक मौसमी चटर्जी, पूनम ढिल्लों और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस। ऐसा कहा जाता है कि विनोद खन्ना जब आए थे इंडस्ट्री में, तो उन्होंने दीवाना कर दिया था। मतलब उनको गुड लुकिंग मानने वालों की कमी थी ही नहीं। और एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि जब आप हीरो बने तो आप किसी न किसी तरह बस अमिताभ बच्चन को पीछे करना चाहते थे, क्या ये बात सच है? जी हाँ, तो विनोद खन्ना सामने से कहते हैं कि देखिए, नंबर वन और नंबर टू तो ये सब तो मीडिया के कारनामा था, मीडिया ने इसे किया था। हम तो अच्छी फिल्में कर रहे थे, मैं भी अच्छी फिल्में कर रहा था, अमित भी अच्छी फिल्में कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कहना कि मैं नंबर वन की रेस में था, अमिताभ बच्चन को पीछे करने की कोशिश कर रहा था, ये गलत है। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि एक स्टार, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, कुछ चीजें जो हैं वो मीडिया की जनरेट की होती हैं, उत्पन्न की होती है। मतलब जैसे कि बहुत बार हमने सुना है कि रफी साहब और किशोर दा के बीच में भी कॉम्पिटिशन रहता था, लेकिन अगर आप उनके फैंस, जो कि रियल फैंस रहे हैं, बहुत पुराने फैंस रहे हैं, या उनके कलीग्स रहे हैं, उनसे आप पूछोगे तो आप यही सुनोगे कि ऐसा कुछ था ही नहीं। And I think that's what makes this artistry so beautiful. What do you think about it? जरूर हमें बताइएगा। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक और बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और ये किस्सा शेयर किया गया है जावेद अख्तर साहब जी की तरफ से। जी हाँ, तो जावेद अख्तर कहते हैं कि मैं एक बार दिलीप साहब के साथ बैठा हुआ था और मैं उनसे पूछा कि दिलीप साहब, आपका 50 साल से ऊपर का करियर है, आपने कितनी सारी फेमस और हिट मूवीज की हैं, बट कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई पिक्चर आपने ना की हो और अब आपको फील हो रहा हो कि काश वो पिक्चर कर ली होती, काश वो मैंने उस पिक्चर में काम कर लिया होता, कोई है ऐसी मूवी? तो दिलीप साहब ने 3 मूवीज का नाम लिया। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सी मूवीज का नाम लिया होगा? अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। पहली मूवी थी बेजू बावरा। जी हाँ, बेजू बावरा, उन्हें ऑफर हुई थी लेकिन वो कर नहीं पाए थे, और वो इतनी बड़ी हिट थी कि बाद में भी, मतलब जब जावेद अख्तर ने उनसे पूछा कि आपको मलाल है इस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे इसका तो मलाल है कि मैं ये मूवी नहीं कर पाया। उसमें सबसे पहली है बेजू बावरा। दूसरी मूवी थी प्यासा। इनफैक्ट प्यासा के साथ तो बहुत ही दिलचस्प चीज ये थी कि उसकी स्क्रीनिंग जो है वो दिलीप साहब के लिए रखी गई थी। पहले दिलीप साहब को गुरुदत्त ने ये मूवी ऑफर की और फिर जब दिलीप साहब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि देख मैं ये मूवी करना तो जरूर चाहता हूँ पर मैं देवदास कर रहा हूँ और ये एक जैसी मूवीज हो जाएंगी इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा, तो गुरुदत्त साहब जी ने स्क्रीनिंग रखी मूवी खत्म होने के बाद दिलीप साहब के लिए, और उनको कहा कि आप अगर अभी भी इस मूवी को करने के लिए हाँ कर देते हो तो मैं इसे फिर से रीशूट करने के लिए तैयार हूँ आपको लेकर। लेकिन दिलीप साहब ने कहा कि ऑफकोर्स मैं देवदास कर रहा हूँ इसलिए मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तो उसके बाद जो तीसरा नाम उन्होंने लिया वो था लॉरेंस द अरेबिया। जी हाँ, उसमें भी डेविड ली ने उन्हें बहुत ही अच्छा ऑफर जो है वो रोल किया था लेकिन वो मूवी भी वो कर नहीं पाए थे। सो ये 3 नाम लिए थे यूसुफ साहब ने, यानी कि दिलीप साहब ने, जो कि वो मूवी कर नहीं पाए थे लेकिन उन्हें अपने 50 साल के करियर के बाद ये मलाल जरूर रहा कि काश वो मूवीज कर ली होती, अगर टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती या फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होते तो शायद मैं वो मूवीज कर लेता। या दैट्स व्हाट दिलीप साहब सेड। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। दोस्तों जा रहे हैं हम और वापस आएंगे ऑफ कोर्स कल बहुत ही खूबसूरत गाने से। जो है हम आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने वाले हैं लता जी का गाया हुआ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, एंड नॉट जस्ट माइन बल्कि आप सबका भी। आपको मैं बता दूं कि इसमें देवानंद साहब है और इसमें साधना है, साधना चांद को निहार रही है, और ये सब आपके हिंट है। चलिए अब मैं तो गाना प्ले कर ही दूंगी, लेकिन अगेन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि खूबसूरत रहिए, खुश रहिए, और हाँ सबको अच्छे से काइंडनेस के साथ जो है उनके साथ बिहेव करते रहिए, बिकॉज काइंडनेस जो है इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड राइट नाउ। दैट्स इट, मिलते हैं अब आपसे कल। बाय, सी यू, टाटा। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, अगेन जैसे मैंने कहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट तेरा मेरा प्यार अमर। इससे ज्यादा खूबसूरत क्या ही ऑफकोर्स हो सकता है।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। हाई स्कूल में चाकूबाजी की घटना, जी हाँ, ब्रिस्बेन का रुख करते हुए सबसे पहले यहाँ पर ब्रिस्बेन के एक हाई स्कूल में छात्रों के बीच हुई तीखी बहस के बाद एक टीनेज बॉय पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल छात्र को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हाई टाइड और बाढ़ की चेतावनी, जी हाँ, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने 14 और 15 जुलाई के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। समुद्र और नदियों में उम्मीद से ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय और निचले इलाकों में हल्का पानी भर सकता है। लोगों को अपनी गाड़ियां सुरक्षित जगहों पर पार्क करने की सलाह दी गई है। वहीं खोलो बुशलैंड में प्लांट बर्न, जी हाँ, ब्रिस्बेन के खोलो बुशलैंड रिजर्व में आज काउंसिल द्वारा जंगलों की आग को रोकने के लिए प्लांट बर्न यानी नियंत्रित तरीके से सूखी पत्तियों को जलाने का काम किया जा रहा है। आसपास के निवासियों को धुएं से सावधान रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है। वहीं ब्रिस्बेन प्रो टूर टेनिस की शुरुआत, टेनिस लवर के लिए शानदार खबर। क्वींसलैंड टेनिस सेंटर में आज से ब्रिस्बेन प्रो टूर इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है। इस टूर्नामेंट में जो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उन्हें सीधे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2027 के क्वालिफाइंग राउंड का वाइल्ड कार्ड टिकट मिलेगा। इसके साथ 2032 ओलंपिक्स के लिए द वेब प्रोजेक्ट, जी हाँ, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स खेलों की तैयारियों के तहत बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बड़ी कंपनी AECOM एकॉम को ब्रिस्बेन के नए रेलवे प्रोजेक्ट द वेब स्टेज 1 के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के सर्टिफिकेशन का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं ओलंपिक की तैयारियों में जुटी ऑसी स्टिंगर्स, जी हां, ऑस्ट्रेलिया की महिला वाटर पोलो टीम यानी ऑसी स्टिंगर्स इस वक्त ब्रिस्बेन में जमकर पसीना बहा रही हैं। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स खेलों में ठीक 2 साल का समय बचा होने की खुशी में टीम ने आज ब्रिस्बेन में डबल ट्रेनिंग सेशंस किए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़ा हादसा, जी हाँ, सबसे पहले बात एक बेहद गंभीर खबर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी मिसाइल हमलों की चपेट में यूएई के शिप आ गए हैं। इस हादसे में एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई और 8 अन्य भारतीय घायल हुए हैं। वहीं सोनम वांगचुंग का अनशन, लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुंग जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल के 16वें दिन पर हैं। वो नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश का स्कॉलरशिप घोटाला, सीबीआई ने मध्य प्रदेश में एक बड़े स्कॉलरशिप घोटाले का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि कई कॉलेज और बैंक अधिकारियों ने मिलकर उन छात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से करोड़ों की स्कॉलरशिप निकाल ली जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। वहीं महंगाई में फिर आया उछाल, आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से मार पड़ी है। जून महीने में भारत की रिटेल महंगाई दर 16 महीने से में पहली बार 4% के पार चली गई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने के कारण फूड इन्फ्लेशन 5.32% पर पहुंच गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका और ईरान में तनाव चरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर फिर से हवाई हमले किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी करने का ऐलान दिया है, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में खलबली मच गई है और कच्चे तेल की कीमतें 9% से ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं बहरीन में धमाके और सायरन की गूंज, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस जंग की तपिश अब बहरीन तक पहुंच चुकी है। आज सुबह बहरीन की राजधानी में जोरदार धमाके सुने गए और वहां सुरक्षा के मद्देनजर एयर रेड सायरन बजाए गए। वहीं इसराइल में फिर होंगे चुनाव, इसराइल में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है। वहां अक्टूबर के महीने में नए संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की गई है, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके गठबंधन के लिए एक नया सियासी मुकाबला शुरू हो गया है। वहीं गाजा के लिए $1 बिलियन की मदद। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू गाजा में चल रहे मानवीय संकट को देखते हुए बड़े पैमाने पर राहत कार्य में जुटा है। ईयू इस समय गाजा के लिए दुनिया भर से करीब $1 बिलियन की राशि जुटाने के प्रयासों में लगा हुआ है। वहीं यूरोप का नया मिसाइल डिफेंस गठबंधन, जी हां, सुरक्षा के मोर्चे पर यूक्रेन और 9 अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर एक नया डिफेंस कोइलेशन बनाया है। इस गठबंधन पूरे यूरोप की सुरक्षा के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का काम करेगा। वहीं वियतनाम से लौटे सैलानियों के पार्थिव शरीर, वियतनाम में हुए एक दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीरों को आज सुबह विशेष विमान के जरिए वापस भारत लाया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला, फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह हफ्ता ऐतिहासिक होने जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इस बार दुनिया की 4 सबसे बड़ी ताकतें फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने हैं। साल 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब चारों सेमीफाइनलिस्ट पूर्व चैंपियन रह चुके हैं। वहीं फ्रांस बनाम स्पेन का महामुकाबला आज टेक्सास के अर्लिंगटन में पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, जहां फ्रांस का सामना स्पेन से होने वाला है। इसे यूरो कप सेमीफाइनल का रीमैच भी कहा जा रहा है। इसी के साथ मेसी और एम्बापे में गोल्डन बूट की रेस, इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट जीतने की होड़ बेहद रोमांचक हो चुकी है। लियोनेल मेसी और किलियन एम्बापे दोनों ही 8-8 गोल के साथ टॉप पर चल रहे हैं। वहीं जैनिक सिन्हा बने विंबलडन चैंपियन, टेनिस कोर्ट से बड़ी खबर, वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिन्हा ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ भारतीय महिला टीम की लॉर्ड्स पर ऐतिहासिक जीत, क्रिकेट की मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीडा, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कॉन्टेक्ट करो, ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ, ते लॉ दी एंट्री केसेस नो हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस, ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

निकलवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बरसानी 101 एम ते जी आर जी संदेश शोलक दे नाल बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ा शुरू कर दो। रेडियो बरसानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी, ते bersani@bersani.com साडी ईमेल आई डी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी उह अपनाओ, पर साडे नाल गल्लां बातां जरूर करो क्योंकि सानूं चंगा लगदा तुहाडे गल्लां बातां करनियां। तां चको तुसीं अपना फोन ते साडे नाल गल्लां बातां करो, है ना। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। ते मैं तां आउनी आं, बस हुणे आउनी आं वापिस। उहनां समां तुसीं सुणे जी गीतां नूं इंजॉय भी करो।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 ते जी आपचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड दे चकाचौंध तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों विच खेतरी भाषावां विच बनिया कई फिल्मां ने अंतरराष्ट्रीय मंचां ते भारत दा नाम रोशन कीता। BFTA कांस वैनस ते ऑस्कर वर्गे बहुत सारे अवार्ड फंक्शन विच भारतीय फिल्मां ने अपनी स्टोरी टैलिंग संवेदनशीलता नाल दुनिया नूं प्रभावित कीता हैगा। तां मैं सोचा कि क्यों ना तुहानूं उन्हां फिल्मां बारे दसां जिन्हां ने विदेश विच खूब वाहवाही वटोरी हैगी है। शायद बहुतियां बारे तुहानूं पता होना, बहुतियां बारे नहीं पता होना क्योंकि अदर लैंग्वेज दे विच हैगियां, तां अदर लैंग्वेज जिहड़ी आउंदी हैगी है तां उस बारे सानूं शॉर्ट मूवीज बारे ज्यादा पता नहीं हुंदा। तां चल मैं तुहानूं दस्सदी हां, ते जे तुहानूं समझ आउंदी होई तां जरूर देखियो क्योंकि इह फिल्मां बहुत ज्यादा वधिया है।

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिन बने हुए हूँ। इन्होंने फिल्मों के जड़िया पूरी दुनिया के छाइया हुई ने, तो जी लिस्ट मैं फरोल रही हूँ तो इस विच सब तो पहला नाम जो आता है वह है बूंग जी। हाँ, ये लक्ष्मी प्रिया देवी के निर्देशन विच बनी मणिपुरी फिल्म हैगी है बूंग। फिल्म का नाम ते बूंग ने ना हाल ही विच बाफ्टा अवार्ड 2026 विच बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड जीत के ना इतिहास रच दिता है। फरहान अख्तर ते रितेश सिद्धवानी दे एक्सल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोड्यूस इस फिल्म विच एक छोटे मुंडे की कहानी है जो अपने पिता की तलाश विच निकलता है। फिल्म मणिपुर विच जाति तनाव ते सीमा दीआं चुनौतियां नूं एक बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाउंदी हैगी है जो बहुत वधिया लगती है, क्योंकि जेड़ी चीज बच्चे दे नजरिए दे नाल दिखाई जांदी है कि ना वो नो डाउट कमाल दी हुंदी है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾ ਕਿਆ ਹੁਆ?
4: ਯਾਰ ਆਮ ਸੋ ਵਰੀਡ। Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ।
1: जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वन सन वन एम ते जी आज संदेश अलग दिन से बने हुए। अगली फिल्म है कि ऑल दैट ब्रीथ्स। ए नाम सुन के लगता है कि हॉलीवुड मूवी होनी है बट नो नो नो नो नो नो ए हॉलीवुड मूवी बिल्कुल भी नहीं। ऑल दैट ब्रीथ्स ए इंडियन मूवी है कि शौनक सेन वालों निर्देशित डॉक्यूमेंट्री हैगी है 2023 ऑस्कर दे लई नॉमिनेट हुई सी। 90 मिनट की यह फिल्म दिल्ली के वजीराबाद विच दो भरावां की कहानी है जो जख्मी काली चिलन बचाते हैं कि नहीं। फिल्म ने कांस विच गोल्डन आई अवार्ड ते संडांस विच वर्ल्ड सिनेमा ग्रांड ज्यूरी प्राइज समेत 17 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं कि नहीं। इस 2023 ऑस्कर विच बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर नॉमीनेशन मिले है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
10: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
11: This secret.
12: Hey, yo, Sean.
13: Bambi khitti aata nok di nak tak mere raahan di makama naal. Ho mere raahan di makama naal pak thak. Sahaj subah nu rakh.

अजीत एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस तो बाद अगला जिड़ा नाम है इस लिस्ट विच ओ है जी कोर्ट स्टे कोर्ट स्टेट वर्सेस अनुबा जी कोर्ट ते चैतन्य तामने दी ए एक होर फिल्म कोर्ट ने 2024 दे वेनिस फिल्म फेस्टिवल विच दो पुरस्कार जीते सी लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड ते ओरिजोंटी कैटेगरी विच बेस्ट फिल्म ए फिल्म भारतीय कानून व्यवस्था विच विसंगतियां नु करारा व्यंग हैगा उसते जिस विच एक लोक गायक ते आत्महत्या दे लई उकसाउण दा आरोप लग्या हैगा। इस दे नाल ही एक होर फिल्म बारे दसनी है वह हैगी है जी पर्च्ड। लीना यादव वालों निर्देशित पर्च्ड पेंटू भारत विच महिलावां दे दमन उते उसते प्रतिरोध की कहानी हैगी है। इस फिल्म ने दुनिया भर विच इस नूं बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म ने 18 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैगे ने। तनिष्ठा चटर्जी राधिका आपटे ते सुरविन चावला इस फिल्म दे विच लीड रोल दे विच हैगे ने। फिल्म ने पेंडू भारत दी उन्हां महिलावां दी कहानी बयां कीती है जो पितृ सत्ता नाल लड़दे आजादी दी राह तलाशदियां हैगियां ने।

जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: जी देखो, वेला तो हो चुकिया है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर जाने तो पहला थोड़ू कुछ एक होर फिल्म बारे दसना जरूरी सी, मैं सोचा भी दस ही दिनी हाँ। तो उस फिल्म का नाम है जी डिसिप्लिन जी है, चैतन्य वालों निर्देशित मराठी फिल्म हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आधारित हैगी है। फिल्म नू वेनिस फिल्म फैसटिवल विच FIPRESCI अवार्ड मिले हैगा, ते अल्फोंसो कुआरोन हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक इस दे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से। फिल्म एक संगीत साधक की कलात्मक पूर्णता की तलाश से आधुनिक दुनिया नाल टकरा दी कहानी है। बहुत ज्यादा सोहनी है कि यह फिल्म तुसी जरूर देखियो। बाकी मिलते तो असं रहने हों, जुड़ते जरूर या करो तुम साढ़े रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साढ़े फेसबुक पेज है जी, bersoni@bersoni.com साड़ी ईमेल आई डी है, जरिए जेड़ा भी तुम अपना चाहते हो अपना लो, पर सा गलबात जरूर करो है ना। तो बाकी मैं तो यही कहना है कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करो, सत श्रीकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash you, boy.
3: Kid.
2: Tomorrow night, I'm gonna smash you.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: आया क्या?
4: आएगा.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
0: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में

हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में। इस जगत में दो प्रकार के इंद्रियों के विषय होते हैं, एक है अचेतन जड़ या निर्जीव या निष्प्राण, या तो आप कह सकते हैं प्राणहीन विषय, और दूसरा है जीवित विषय जिसमें चेतना होती है। तो मटेरियल प्लेटफॉर्म यानी कि संसारिक आधार पर जब कभी भी इंद्रियों का इंटरेक्शन ऐसे सजीव या निर्जीव वस्तुओं से होती है, उसका अंतिम परिणाम बारंबार कष्ट या क्लेश ही होता है। और हमारे बारंबार प्रयास के बावजूद भी जब हम उन दुखों का निवारण करने में असमर्थ रहते हैं, तब हम आशा की दीप लेकर भगवान के पास जाते हैं अपनी समस्याओं से राहत प्राप्त करने के लिए, या तो कम से कम क्षणिक शांति प्राप्त करने के लिए। तो आश्चर्य की बात यह है कि आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल अभ्यास से आशाएं या अपेक्षाएं या उम्मीदें उत्पन्न होती है शांति, समृद्धि या सुख जैसी वस्तुओं के लिए। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही एक व्यक्ति साधना अर्थात आध्यात्मिक अभ्यास अपनाने लगता है, उन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा का आभास होने लगता है, उन्हें कुछ हद तक मन की शांति प्राप्त होने लगती है और आम कुशलता दिखाई देती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़े ही उत्साहपूर्वक भगवान की शक्ति तथा प्रेम में आदान प्रदान का समर्थक बन जाता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है और उनके जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जिसे वो चाहता नहीं है, और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक नहीं दिखता जैसे आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआत में दिख रहा था, तब वो विचार करने लगता है कि अब भगवान कहां गए, ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मुझे भगवान मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को दूसरे लोग सांत्वना देने की भी कोशिश करते हैं, केवल भगवान पर श्रद्धा रखो भाई और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु उन्हें जिस उच्च सांसारिक अवस्था की आशा होती है वो तो कभी आती ही नहीं है। इसी कारण आध्यात्मिक जीवन के पानी में वो यूं ही फिरता रहता है और अपनी आम परिस्थिति के विषय में संशय को उत्पादन करते रहता है और सोचता है कि क्या भगवान नहीं सुनते हैं, क्या मेरे अभ्यास या मेरी साधना में कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्या गड़बड़ हो रहा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों की यही दशा होती है। जो ऐसा ही है तो इसका समर्थन करते हुए भगवान में और अधिक विश्वास के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसका समर्थन करने का एकमात्र तरीका केवल यही है कि जब तक हमारी श्रद्धा शास्त्र के निर्णायक सत्य पर आधारित नहीं हो, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ आता है, तब तक आध्यात्मिकता के नाम पर भावुक बनने का खतरा है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ स्पिरिचुअलिस्ट वी विल बी इन डेंजर ऑफ बिकमिंग अ सेंटिमेंटलिस्ट। शास्त्रिक ज्ञान के सहयोग से अपने आप को मदद करने के प्रयास के स्थान पर हम मंद और आलसी बन जाते हैं, ये सोचते हुए कि भगवान मेरे लिए सब कुछ कर देगा। इस प्रकार कई लोग और ही अधिक कमजोर बनते जाते हैं और आसानी से मुड़ने वाली उनकी श्रद्धा ही डगमगाने लगती है। भगवान से सुरक्षा की धारणा बड़े ही न्यायपूर्वक शास्त्र में समझाई गई है। सभी प्राणियों के नित्य धर्म को सनातन धर्म कहते हैं और उस धर्म पर वास्तविक श्रद्धा सही ज्ञान पर आधारित है कि श्रद्धा क्या है और भगवान के प्रति शरणागति का तरीका कैसे कार्य करता है। इसको समझने के लिए कर्म, भाग्य, प्रयास और समय जैसे मूल रहस्य को समझना होगा, और ये कर्म, भाग्य, प्रयास और समय सब पर लागू होते हैं। अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय श्लोक नंबर 14 और 15 में प्रत्येक कार्य के पीछे जो पांच तत्व होते हैं उन्हें समझाते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा,
दैवम चैवात्र पंचमम। दूसरे शब्दों में कुछ भी होने के लिए ये पांच आवश्यक है, कार्य करने का स्थान, कार्यकर्ता, कार्य करने के लिए हथियार, कार्य का प्रयास और परमकर्ता का हस्तक्षेप। जो भी कुछ गलत या सही एक व्यक्ति करता है वो इन पांच तत्वों के द्वारा ही होता है। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी में दिलचस्पी रखने वाले और आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले हम कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी ओर से जो चेष्टा होनी चाहिए, जो प्रयास होना चाहिए, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमें उपयुक्त साधन परखने होंगे और उचित अनुकूल स्थान चुनना होगा जहां कार्य किए जा सके, क्योंकि प्रयास हमारे जीवन का एक आवश्यक भाग है। जो हमारे पास कार्य का स्थान हो और कार्य करने के साधन की उपलब्धि हो और हम प्रयास ना करें तो सफलता असंभव है। यदि दिलचस्पी, ध्यान और सतर्कता में कमी हो तो ये अनहोनी की ओर ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, जो गाड़ी का ड्राइवर सतर्क ना हो या अचेत हो तो दुर्घटना की ही संभावना रहेगी। तो ये चार, कार्य का स्थान, कार्यकर्ता, प्रयास तथा समय, पांचवे के साथ यानी भगवान के साथ साथ में कार्य करते हैं, तभी हम ठीक प्रकार से सफलता और विफलता का निरीक्षण कर सकेंगे। और जो लोग किसी भी कार्य में भगवान को नहीं देख सकते हैं, भगवान के हाथ को नहीं देख सकते हैं, जो केवल पहले के चार तत्व को ही देख सकते हैं, तो निश्चित ही ये व्यक्ति अपने आप को ही कर्ता मानेगा, क्योंकि उनके कार्य में भगवान कैसे इन्वॉल्व्ड है उसको तो पता ही नहीं है। इसी कारण वो जो कुछ भी करते हैं वे सोचते हैं कि वो खुद कर रहे हैं। जो इन पांच तत्वों को नहीं जानते हैं वो गलती से अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं। इसी को कहते हैं झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। वो सोचता है कि वो स्वयं कर रहा है, परंतु वास्तव में प्रकृति करवा रही है। और गीता के अनुसार प्रकृति का संचालन करने वाले स्वयं भगवान है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात ये प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है। तो सुरक्षा के विषय का वास्तविक सार ये है कि आध्यात्मिकवादी आलसू नहीं बन जाते हैं, निष्क्रियात्मक नहीं बनते हैं, परंतु कार्य करने के सभी सामग्रियां बटोरते हैं और भगवान पर निर्भर रहते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं और कर्तव्य निभाने का परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं। कोई भी कार्य में वो पार्टिसिपेट करता है, वो भाग लेता है अपने प्रयास से, और स्वयं भगवान अनगिनत मात्रा में उस प्रयास का उत्तर देते हैं। तो भगवान का हाथ किस तरह से हर एक वस्तु में होता है, हर एक कार्य में होता है, इसकी जो समझ गलत हो जाए तब एक व्यक्ति अपने प्रयास को कम करते जाएगा, ऐसी आशा रखते हुए कि भगवान के चमत्कार मात्र से ही उसके जीवन में सफलता आएगी। एक गांव के व्यक्ति ने भगवान की सुरक्षा के विषय में बड़े ही सरलता पूर्वक समझाया। उन्होंने कहा कि जो आप टेक्निकली देखो तो एक प्राणी का प्रयास 99% है, 99%, और भगवान की कृपा केवल 1%, परंतु उस परिणाम का उस प्रयास पर जो वास्तविक असर है वो केवल 1% है और भगवान की कृपा 99% है। और यही बात भगवद गीता प्रकाशित करती है। मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कितने कई प्रयास दांव पर लगाने पड़ते हैं भगवान की कृपा के मिलान में, परंतु अंत में जो कृपा प्राप्त होती है उसकी मात्रा हमारे चेष्टा और हमारे प्रयास से अनगिनत बार अधिक होती है। सुरक्षा का अर्थ है निर्भर रहना, और स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। जब हम किसी अधिकारी को स्वीकार करते हैं, अर्थात उनसे रक्षा की अभिलाषा करते हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि हमारे भाव में शरणागति है।
सुरक्षित होने में दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, एक है आश्वासन और दूसरा उनके विपरीत, आवश्यकता से अधिक निर्भर। और जब हम आवश्यकता से भी अधिक निर्भर हो जाते हैं तो लापरवाही हो जाती है। इन दोनों में निरंतर खिंचतानी होती है। जो श्रद्धालु होते हैं और जो श्रद्धाहीन होते हैं, इन दोनों के विपरीत विश्वासों के कारण खिंचतानी होती रहती है। जो श्रद्धालु है वो विश्वास करते हैं कि भगवान रक्षा करेंगे, और जो श्रद्धाहीन है वो स्वयं अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। दोनों अपनी अपनी विश्वास पर अटल रहते हैं। अश्रद्धालु लोग विशेष कर ये नहीं समझ पाते हैं कि सुरक्षा की खोज श्रद्धालु लोगों के लिए कैसे काम करती है। परंतु श्रद्धालु लोगों के मन में ऐसा कोई तनाव नहीं है, क्योंकि हर समय वे जानते हैं कि उनके जीवन में भगवान क्या कर रहे हैं, और ये बात अश्रद्धालु लोगों के समझ के बाहर है। भगवान पर निर्भर रहने का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा युक्त होने का अर्थ क्या होता है? अश्रद्धालु लोग जिन्होंने भगवान के हाथों का अनुभव किया ही नहीं है, या अनुभव करते हुए भी अनजान है, वे संशय से भरपूर है। वे ललकारते हैं कि भगवान अपने अनुयायी या भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, और जो वह वास्तव में करते भी है तो इन लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। कई लोग जो भगवान पर शरणागत नहीं है, उनके जीवन में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो यह कैसे संभव है? आलोचना करने वाले लोग बड़े ही कड़े रूप से पांडवों के ऊपर आए हुए दुख के विषय में बोलते हैं। वे कड़े ढंग से प्रत्युत्तर देते हैं कि धर्म को इतनी अच्छी तरह से पालन करते हुए भी पांडवों को क्या मिला? फलस्वरूप उन्हें संघर्ष मिला, अपने बच्चे और परिवारजनों को युद्ध में खो दिया, और अपने ही भ्राता कर्ण को मार डाला। तो दुख के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके जीवन का परिणाम कौरवों के जीवन के परिणाम से भिन्न कैसे था? कौरवों को दुख प्राप्त हुआ मरते हुए, और पांडव लोग जीते जी दुखी हुए। इसका समर्थन करना इतना आसान नहीं है। जो हम इसे सामान्य दृष्टि से देखें तो हम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उलझन में पड़ जाए। पांडवों के जीवन को तब समझा जा सकता है जब एक व्यक्ति उन सिद्धांतों से परिचित हो जिन पर जगत के कानून प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। और यह समझने के लिए हमें श्री राम और श्री कृष्ण जैसे इस जगत में भगवान के अवतारों को भली भांति ग्रहण करना होगा। इन सब अवतारों के विशेष आचरण और शिक्षण होते हैं। वास्तव में भगवान कैसे मदद करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो बहुत ही अनोखा है, और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा। जो हम महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य को इस दृष्टिकोण से ना देख पाएंगे तो हमारे जीवन में हम भगवान की भूमिका को गलत समझ बैठेंगे। श्रद्धालु लोगों के लिए और अश्रद्धालु लोगों के लिए, दोनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि हम भगवान से गलत आशाएं रखते हैं। वी हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गॉड। ऐसे दोषों से श्रद्धालु लोगों के अंदर भी संशय उत्पन्न होते हैं। और रही अश्रद्धालु लोगों की बात, तो उनके संशय तो और मजबूत होने लगते हैं। क्या ऐसे अवतार अपने भक्तों को पहले से ही चेतावनी देते हैं कि उनको किस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या किस प्रकार से वो उनकी रक्षा करेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वास्तव में वो तो ये भी शपथ नहीं लेते हैं कि वे अपने भक्तों को निरंतर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसा करने के स्थान पर ये अवतार छुपे रहते हुए ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके भक्तों के संघर्ष और आत्मचेष्टा बढ़ती है, ताकि उनके हृदय अत्यधिक कृतज्ञता और प्रार्थनाओं से भरपूर हो जाए। तो वास्तविक सुरक्षा क्या है, उसका हमारे पास स्पष्ट चित्र होना चाहिए। जब पांडवों ने कृष्ण की सुरक्षा का आश्रय लिया, तब उन्होंने तीन मुख्य सिद्धांतों को दर्शाया। पहला, एक कृतज्ञ हृदय, अंग्रेजी में कहेंगे अ ग्रेटफुल हार्ट। दूसरा है दूरदर्शक मन, अंग्रेजी में कहेंगे अ विजनरी माइंड। और तीसरा है कार्यशील इंद्रियां, यानी एक्शन ओरिएंटेड सेंसेस।
पांडवों के जीवन में कृष्ण की सुरक्षा इन तीन सिद्धांतों को सामने रखती है। अक्सर पांच पांडव निसहाय अवस्था में थे, फिर भी वे धर्म के पथ पर चलते रहे। उनके हृदय कृष्ण के प्रति कृतज्ञता से भरपूर थे। उनके निर्दोष और साहसी जीवन से हम देख सकते हैं कि वे कैसे सदा श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहे, विशेष करके आपत्ति के समय पर, जिसके फलस्वरूप उनके स्मरण में सदा भगवान रहे। पांडव सदा आत्मनिर्भर रहे, जिसका मुख्य विभाग है सही समझ के साथ श्रद्धालु बने रहना। उनकी आशाओं के पीछे उनकी चेष्टाएं या कोशिशें थी, उचित युक्ति का उपयोग था, गलत युक्ति की सुधार थी, बदलते हुए संजोग से सीखते थे, उन परिवर्तनों पर कार्य करते थे, सही संसाधन या रिसोर्सेस को कलेक्ट करते थे, बटोरते थे, विघ्न बाधा तथा असफलता का अनुभव करते थे, उत्पात और संघर्ष के समय पर भी अंदर और बाहर से एक दूसरे के साथ ही रहते थे, कुंती विदुर द्रौपदी तथा ऋषि मुनियों की सलाह लेते थे, और हां सबसे प्रमुख श्री कृष्ण की सलाह लेते थे, जो उन्हें अनोखे ढंग से सुरक्षा प्रदान करते थे। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शास्त्रिक ग्रंथों में उन लोगों का चरित्र दिया हुआ है जो इस मार्ग पर चल चुके हैं। जिस प्रकार नदी का पानी निरंतर बहते रहता है, उसी प्रकार से इस जगत में दुख की धारा बहती रहती है, और हमारे अंदर इन दुखों का सामना करने का साहस लाने के लिए और उचित प्रेरणा देने के लिए शास्त्रों में ऐसे धर्मपरायण लोगों का विवरण दिया हुआ है, ताकि हम इस मार्ग को कठिन जानकर छोड़ ना दे। बिल्कुल निस्सहाय या कठिन परिस्थिति में भगवान के प्रति प्रार्थनाएं हृदय के अंतकरण से हो सकती है, केवल मुख से या जुबान से नहीं। शास्त्र में बताए हुए धर्मपरायण लोगों के विवरण से हम ये भी सीख सकते हैं कि जब हमारी परिस्थिति का सामना जब उन्होंने किया था, तब उन्होंने उस अवस्था में क्या किया था। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होती है, जो समस्याएं उठ खड़ी होती है, उसका क्या सुझाव अपनाना चाहिए और उस परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों ओर की बातें हमें शास्त्र में उदाहरण सहित मिलती है। इसी कारण जो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि शास्त्र का हमारे जीवन से क्या मतलब है, उन्हें ये जानना आवश्यक है कि ज्ञान और मार्गदर्शन में शास्त्रिक ग्रंथ और गुरुजनों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो लाइब्रेरी में रखी हुई सभी पुस्तकों को पढ़ चुका हो, परंतु जिन्होंने शास्त्रिक ग्रंथ नहीं पढ़ा हो, वो सदा ज्ञान और विज्ञान के मूल रहस्य से वंचित ही रहेगा। वैदिक शास्त्रों में ना तो केवल ज्ञान दिया हुआ है, परंतु उस ज्ञान का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उसे जीते जागते उदाहरण के साथ दिया हुआ है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसे वैदिक साहित्य में उठाया ना गया हो। उन सभी विषयों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। व्यवहारिक रूप से उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाता है, वो भी स्पष्ट रूप में मिलता है। अब ये सुनने के बाद कोई ऐसा भी कह सकता है कि मान लिया जाए वैदिक शास्त्र में सब कुछ है, सब ज्ञान है, सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, परंतु जिस विशेष समस्या का समाधान मैं ढूंढ रहा हूं, वो विवरण मुझे किस ग्रंथ में, वैदिक साहित्य के किस कोने में मिलेगा, मुझे कैसे पता, मैं उस उपाय को कहां ढूंढने जाऊं। इसका उपाय बड़ा ही सरल है। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब क्या हम मेडिकल जर्नल में उसका उपाय ढूंढने लगते हैं? नहीं, हम एक जानकार डॉक्टर के पास जाते हैं, एक योग्य डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसे हमारी समस्या के विषय में पता होता है और उसका उपाय भी पता होता है। उनको उस मेडिकल क्षेत्र में ज्ञान है, विज्ञान है और अनुभव है। उसकी सलाह और रिकमेंडेशन को हम स्वीकार करते हैं, और उससे प्राप्त सलाह या रिकमेंडेशन या दवाइयां लेने के बावजूद भी जो हमारी बीमारी ठीक ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम फिर से उनके पास जाते हैं। जो वो डॉक्टर बारंबार हमको ठीक करने में असमर्थ रहे, तो क्या हम घर पर बैठकर ऐसा मानने लगते हैं कि जितने डॉक्टर है ये सब बेकार है, हमारे एक या दो डॉक्टर के अनुभव से हम इस निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकते कि सब डॉक्टर बेकार है।
तो जिस प्रकार से रोगी होते हुए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी समस्या का समाधान करने के लिए, उसी प्रकार से जब जीवन में समस्याएं आती है और उस समस्या का समाधान हम कैसे करें ये हमें पता ना हो, केवल इतना पता हो कि शास्त्रीय ग्रंथ में उसका समाधान होगा ही, तब हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो शास्त्र जानता हो, और ना ही केवल जानता हो परंतु शास्त्र अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत कर रहा हो। और जो अपना जीवन शास्त्र अनुसार व्यतीत करता है उसी के पास शास्त्र के ज्ञान का व्यक्तिगत अनुभव होता है, वही हमारी समस्या के विषय में सही सलाह दे सकता है। जो स्वयं रोग ग्रस्त हो वो दूसरों को कैसे रोग मुक्त करेगा? इसी कारण हम जैसे सामान्य लोग जो शास्त्र नहीं जानते हैं उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो न केवल शास्त्र का जानकार हो परंतु शास्त्र अनुसार आचरण करते हुए उसके पास शास्त्र का अनुभव भी हो, परंतु उसी शास्त्र अनुसार। वास्तव में हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिनके पास न तो केवल रोग को ठीक करने का सुझाव हो परंतु साथ ही साथ रोग वापस कभी ना आए ऐसा सुझाव भी हो। इसी कारण हमें केवल ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो शास्त्र का जानकार हो या शास्त्र का अनुभवी हो, परंतु हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो शास्त्र का सारांश समझता हो। सारांश यानी कि एसेंस समझने वाले सबसे अधिक भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारांश समझता है वो विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय कर पाएगा, केवल ज्ञान और अनुभव से सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। जो ज्ञान अनुभव तथा सारांश भी समझता है और इस प्रकार जो ब्रह्मनिष्ठ है वही गुरु बन सकता है, और ऐसे प्रामाणिक गुरु की उपलब्धि भगवान स्वयं इस जगत में जीवों के कल्याण के लिए रखते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होती उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी दौड़ धूप बंद नहीं होगी। जो भी हमारे भविष्य के लिए हमारी सद्गति के लिए हमें करना है वो हमें व्यस्त होते हुए भी करना होगा। जब हम व्यस्त होते हैं तो कुछ कुछ कार्य हम टाल देते हैं कि जब हमें समय मिलेगा तब हम करेंगे, और वो टाली हुई चीज कभी होती ही नहीं है जब तक हम उसको पुनः फिर से शेड्यूल पे ना लाए। जैसे आप कितने भी व्यस्त और बिजी हो आपको खाने का टाइम तो निकालना ही होता है, और जो हमारे पास कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने को हो, इम्पोर्टेंट कार्य हो, तो हम एक ऐसी योजना बनाते हैं कि हमारे व्यस्त या बिजी होने के बावजूद भी हम उस कार्य के लिए समय निकालते हैं। और शास्त्रीय ग्रंथ हमें पहले से चेतावनी देता है कि हमारी अंत घड़ी निकट आ रही है, हमें उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। हम जीवन में और सब कुछ को टाल सकते हैं परंतु हम हमारी आध्यात्मिक यात्रा को टाल नहीं सकते हैं। जाने के समय पर सलाह देने वाले भी साथ में नहीं जाते हैं, हमें स्वयं पहले से ही जानकार बनना पड़ेगा। हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी विदेश का भ्रमण फ्लाइट पर तो किया ही होगा। विमान के कॉकपिट में बैठे हुए दो पायलट होते हैं, एक कैप्टन होता है और एक को पायलट होता है। कितने हजार घंटे के उड़ान के बाद कोई एक कैप्टन बनता है, तो एक को पायलट के सहयोग के लिए कैप्टन होता है। विमान चलाने के समय पर उनके पास एक अनुभवी कैप्टन या सहयोगी है, परंतु जिस समय हमारी मृत्यु होती है उस समय से पहले हमें एक योग्य कैप्टन बन जाना होगा। हमें उस परलोक जाने वाली यात्रा का कैप्टन बनना होगा। अभी जब हम धरती पर है तब हमें सब सलाह मिल सकती है, सब ट्रेनिंग मिल सकती है, परंतु परलोक गमन के समय पर हम अकेले होंगे, हमारे साथ यहां से कोई आने वाला नहीं है। हमें वो जानकारी और ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी प्रस्थान से पहले। क्या जो निश्चित है उसे टालते रहना बुद्धिमानी है? क्या जो निश्चित है उसे अनदेखा करना बुद्धिमानी है? इसी कारण एक महान आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ने एक गीत लिखा है कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोट निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले, के है पिशाचिनी माया के गोद में सोए हुए जीव तुम जागो, कब तक पिशाचिनी माया के गोद में सोते रहोगे?
भला किसी पिशाचनी या विच के गोद में आराम से सोते रहना बुद्धिमानी है? हे जीव, ये तुम्हारे साथ ऐसा छल करेगी कि तेरे पास उसके पंजे से निकलने का कोई सरल मार्ग नहीं रह जाएगा। जो कल करना है उसे आज कर, और जो आज करना है उसे अभी कर। श्री नारद मुनि ने भागवत पुराण के सातवें स्कंद में कहा है कि जो हमें अपने जीवन से उत्तम लाभ की प्राप्ति चाहिए, तो हमें दृढ़ निश्चय सहित अपने आध्यात्मिक जीवन की योजना बनानी होगी, प्लानिंग करना होगा। अंत समय में जब हम इस जगत से प्रस्थान करने वाले होते हैं, उस समय हमारे जीवन में किसी भी चीज का कोई मोल नहीं रह जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट सेव योरसेल्फ, देन सेव द वर्ल्ड। अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन हर एक प्राणी का सर्वप्रथम प्रायोरिटी होना चाहिए। जीवन में दूसरे सभी कर्तव्य दूसरे दर्जे पर आते हैं, परंतु माया के भ्रम के कारण जिस आध्यात्मिक प्राप्ति को हमें प्रथम स्थान देना चाहिए, उसे हमारी लिस्ट में हम आखिरी में रखते हैं। और जो हम इन्हें इंपोर्टेंस नहीं दे, तो हमारे बच्चे कैसे इसे इंपोर्टेंस देंगे? अधार्मिक माता पिता अपने बच्चों को कैसे धार्मिक संस्कार दे सकते हैं? हर एक व्यक्ति को, चाहे उनकी श्रद्धा हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, समय निकालकर अपने परिवार के साथ एक बैठक करे कि अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए वे प्रतिदिन क्या करेंगे। जब तक ऐसा प्लानिंग नहीं होगा, ऐसी योजना बनाई नहीं जाएगी, तब तक समय तो बीतते जाएगा, परंतु हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमारी इस योजना में 5 वस्तुओं का समय निकालना चाहिए। अपने रहने के स्थान को स्वच्छ और आध्यात्मिक बनाए रखना, प्रतिदिन भगवान के नामों का उच्चारण करना, प्रतिदिन भगवद गीता, श्रीमद भागवत जैसे शास्त्रीय ग्रंथ का अध्ययन करना या उच्चारण करना, संत पुरुषों का संग करना, भगवान के प्रति प्रार्थनाओं का अर्थ समझते हुए उच्चारण करना, और स्वयं भगवान की विधिवत आराधना करना। ये सब करने के लिए, अधिक समय प्राप्त करने के लिए, प्रातःकाल सुबह जल्द जागने की योजना बनाए, और सुबह जल्द जागने के लिए रात को जल्द सोने की योजना बनाए। केवल बार बार बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होगा, योजना या प्लान बनाकर उस प्लान को एक्सिक्यूट करना होगा, योजना के अनुसार कार्य करना होगा। केवल अपने शेड्यूल को इस प्रकार से बदलने से आपके जीवन में, आपके मन में और आपके परिवार में आपको कम तनाव का अनुभव होगा, मन की शांति मिलेगी, तेज बुद्धि का प्रकाशन होगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया होने लगेगा, और ऐसी सात्विक स्थिति में ज्ञान बढ़ने लगेगा और वास्तविक आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने लगेंगे। आसुरिक भाव और प्रवृत्तियां कम होने लगेगी, और जीते जी हमारे इस जीवन में हमें अच्छे परिवर्तन दिखाई देंगे, हमारे भाग्य की रेखा भी बदलने लगेगी। इसमें जो परिणाम दिखेंगे वो सब पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। इसलिए हम क्यों इस सुख से वंचित रहे? हमारा अभी का जीवन किस मोड़ पर जाए और इस जीवन के पश्चात किस परिणाम को प्राप्त करे, ये सब हमारे ही हाथों में है। भगवान ने हमें ये चुनने का अवसर दिया है, इसलिए हमें अपनी दिनचर्या अच्छे के लिए बदल देनी चाहिए। यही शास्त्रीय ग्रंथों की सलाह है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां है। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रियां तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। एक व्यक्ति कितने बजे सोता है और कितने बजे जागता है, उसी से पता चल जाता है कि वो कैसे संसारिक गुण में स्थित है, सात्विक गुण में या तामसिक गुण में। तामसिक गुण में स्थित व्यक्ति रात को देर में सोता है और फिर
सुबह देर में जागता है और ऐसे तामसिक गुण में अज्ञानता बढ़ती है और वास्तविक ज्ञान लुप्त होने लगता है। इसलिए परगमन की तैयारी सात्विक गुण में स्थित होने से ही शुरू होती है। जिन व्यक्तियों को जल्द सोने का अभ्यास नहीं है और रात को देर में सोते हैं, उसे चाहिए कि एक दिन देर में सोने के बावजूद भी जल्द उठ जाए। नींद न पूरी होने के कारण उसे उसी रात को जल्द से नींद लगने लगेगी। इस तरह आप एक ही दिन में अपने अंदर के टाइम क्लॉक को बदल सकते हैं। हमें यह याद रखना है कि जब हम दिन भर काम करके घर वापस आते हैं, तब उस थकी अवस्था में हम रिलैक्स करना चाहते हैं, और जो हम उस समय जागते ही रहे तो हम ऐसी चीज करना पसंद करेंगे जिसको करने में कोई दिमाग नहीं लगता। इसी कारण कई लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं जिसमें कुछ बुद्धि का उपयोग नहीं करना पड़ता, और फिर उनका मन उस टीवी के अधीन हो जाता है, टीवी में चलते हुए सीरीज के अधीन हो जाता है। उनके कितने घंटे इसी में निकल जाते हैं जिससे अंत में उन्हें कुछ लाभ भी नहीं मिलता, केवल एक बनावटी दुनिया में फिरा करते हैं। समस्या यह है कि ऐसा करने से एक आदत बन जाती है और फिर ये आदत प्रतिदिन होने लगती है और हमारे जीवन का बहुमूल्य समय का विनाश होते ही जाता है। ऐसी वस्तु में हमारा समय जाता है जिससे बदले में अंत में हमें कोई लाभ नहीं होता, और इसी का नाम है दुर्दशा। जो हमें अपने भविष्य का कल्याण चाहिए तो उस कल्याण का प्रथम चरम है सुबह जल्द जागना, और जल्द जागने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वैसी योजना हमें बनानी ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं जानते हैं, यहां तक कि अंग्रेजी में भी और एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। इस कहावत के भी कई वर्जन्स होंगे। हमारे वैदिक शास्त्र में शुभ मुहूर्त की घोषणा है, एक मुहूर्त 48 मिनट होता है, 48 मिनट्स। सूर्य उदय से देर से दो घंटे पहले एक मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए यह मुहूर्त सबसे उत्तम है। तो सूर्य उदय से 2-2.5 घंटे पहले जागकर स्नान करके जो भी आध्यात्मिक कार्य में उस समय हम लगते हैं, उसका परिणाम दिन में और किसी भी समय करने से कई बार अधिक मिलता है। ये सब भगवान के द्वारा दिए हुए अपॉर्चुनिटीज या अवसर है जिसका हम सही उपयोग कर सकते हैं और जिसे हमें सोते हुए गवा नहीं देना चाहिए। जो घर के सदस्य जल्द जागने का अभ्यास करने लगे, तब आपको अनुभव होगा कि कैसे आपके पास आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए समय है। इस सांसारिक जगत में सब अज्ञानता में होते हैं, यहां तक कि ब्रह्मा भी अज्ञानता में थे जब तक उन्हें कृष्ण के द्वारा ज्ञान न दिया गया। इसी कारण किसी को भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। इस सांसारिक जगत में हर एक व्यक्ति सुख भोग प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में व्यस्त होते हैं। एक प्राणी सोचता है, इच्छा करता है कि जो मुझे अवसर मिले तो मुझे ब्रह्मा की पदवी प्राप्त करनी है, तब मैं एक बड़े ब्रह्मांड की रचना कर सकता हूं। इस प्रकार उसे ब्रह्मा का शरीर प्राप्त होता है। और एक छोटा सा कीड़ा सोचता है कि जो मैं इस कमरे में एक छोटा सा छेद बना दूं तो मैं वहां शांत पूर्वक रह सकूंगा और खा सकूंगा। तो ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, हम एक बड़ी इमारत की रचना करने की इच्छा करते हैं, और एक चींटी एक कमरे में छेद बनाने की इच्छा करते हैं, परंतु इन कार्यों का गुण एक ही है। शास्त्र में हम सब मूर्ख कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं जो सदा के लिए नहीं रहेगी। अज्ञानता के कारण हम सोच रहे हैं कि यह बहुत अच्छा रहेगा। हम इच्छा को प्रकट करते हैं और उस इच्छा अनुसार फिर हम कार्य करते हैं, और इसी कारण कई कठिनाइयां उत्पन्न होती है। समय सब कुछ खा लेता है। समय सुंदर मुखड़े को बदसूरत बना देता है, जवान को बूढ़ा बना देता है, काले बाल को सफेद बना देता है, बूढ़ों को और आजकल नौजवानों को भी कब्रस्तान में भेज देता है। जितनी अच्छी अच्छी घटनाएं होती है उनको केवल स्मृति में बदल देता है। सूर्य के उदय और ढलने में
हमारे जीवन का एक दिन नष्ट हो जाता है। केवल वो जो समझ पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है परंतु जीव है, भगवान के नित्य दास है, वही समय के प्रकोप से बाहर जा सकते हैं। विश्व में जो आंदोलन स्वतंत्रता खोज रही है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभाग से, अंत में तो इससे भी किसी को लाभ नहीं होगा, क्योंकि यह सब देवी शक्ति के अधीन है। एक बद्ध प्राणी संसारिक प्रकृति के पूर्ण अध्यक्ष में है और इस प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है समय, और यह प्रकृति का संचालन तीन गुणों से होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब तक कोई व्यक्ति सात्विक गुण में स्थित ना हो, वो किसी भी चीज को सही रूप से परख नहीं सकता। राजसिक और तामसिक गुण से जो पीड़ित होते हैं, वे तो कभी नहीं देख सकते हैं और परख सकते हैं जो स्थिति है उसको। इसी कारण जो कोई भी व्यक्ति रजगुण और तमोगुण से प्रभावित है, वे अपने कार्यों को सही मार्ग पर ले जा ही नहीं सकता। केवल वो जो सात्विक गुण में स्थित है, वो कुछ हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग राजसिक और तामसिक गुण से प्रभावित है। इसी कारण उनकी योजनाएं और उनके प्रोजेक्ट अंत में किसी का कल्याण नहीं कर पाते। प्रकृति के इन तीन गुणों से ऊपर है नित्य समय या टाइम, जिसको काल कहते हैं, क्योंकि वो इस सांसारिक जगत का सारा ढांचा ही बदल देते हैं। जो कुछ समय के लिए भी हम कुछ लाभदायक कार्य करें, तो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट को भी समय टिकने नहीं देगा। इसी कारण केवल एक ही संभवता रह जाती है कि ये इटर्नल टाइम, काल को ही हम समाप्त कर दे, जिसे काल सर्प कहा गया है। जब सांप किसी को काट लेता है तो प्राण ही दांव पर लग जाते हैं। इसी कारण शास्त्र में कहा गया है कि काल सर्प से बचने के लिए, उनके चंगुल से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है भक्ति योग, जिसको भगवद गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है। कोई भी सामाजिक कार्य हो या योजना हो, फिलंथ्रोपिक प्रोजेक्ट हो, उसका उपयोग भक्ति योग में करना चाहिए, भगवान की प्रेम में, सेवा में करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र उसी से लोगों को माया के चंगुल से छुटकारा प्राप्त कराया जा सकता है। माया यानि प्रकृति, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं काल, कर्म और गुण। इसी कारण ये सभी के लिए अनिवार्य है कि हम अपने जीवन में प्लानिंग करें, और कैसी प्लानिंग करें। खाने पीने, सोने और रहने की तो प्लानिंग हम कर चुके हैं और प्रतिदिन करते आए हैं। ये तो केवल हमारे शरीर और हमारे परिवारजनों के शरीरों का निर्वाह है, और जीवन केवल इसी के लिए नहीं है, और ना ही भगवान से ऐसे जीवन मांगने के लिए है। वास्तव में ये मनुष्य शरीर परम गति की प्राप्ति के लिए दिया गया है, और इसके लिए टाइम और योजना हमारे शेड्यूल में होनी चाहिए, और तभी हमारी आत्मा को तृप्ति मिल सकती है। जो हम यहां आरामदायक जीवन जीते हैं परंतु अंत में नरक चले जाए या परलोक में किसी दुख भरी अवस्था में फंस जाए, तो यहां जो भी कुछ किया इस जगत में, उसका क्या लाभ, जो अंत में हमें दुखी ही होना हो। ये वास्तव में हर एक मनुष्य को गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात है। हमारे आज के इस विषय पर जो किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी हो, तो उसे आप हमारे पास अवश्य भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है वेदवाणी ब्रिस्बन @gmail.com। हरे कृष्णा।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: ਹੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਕਰੋ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च
2: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन नमस्कार अदाब सत श्री अकाल मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी प्रोग्राम जी शुरू हो चुका है जाने का सफर और उम्मीद है आपकी दोस्त आपका ये सफर जो है एनर्जी के साथ पॉजिटिव वाइब्स के साथ भर जरूर देगी तो चलिए फिर एक गर्म चाय या फिर कॉफी हो जाए साथ में शुरू करते हैं आज का ये सफर लेकिन दोस्तों सफर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए कहते हैं ना दिल की खुशी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ये नहीं कह रहे कि कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस हमेशा करते रहें लेकिन जो काम करने में हमें खुशी मिलती है जिस काम करने में हमें इंटरेस्ट है वो काम जरूर करना चाहिए ताकि हमें पूरा दिन कुछ ना कुछ लगे कि हमने कुछ तो अच्छा किया है और हमारे दिल को सुकून जरूर मिला है। दोस्तों वैसे कुछ भी हो जाए जब कुछ हम अच्छा काम करते हैं ना तो वो सुकून जो हमें मिलता है सबसे बड़ी जीत हमारी जिंदगी की वही होती है। तो सबसे पहले खुद को खुश कीजिए फिर हम दूसरों को खुश करने में कामयाब होंगे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे सुनते हैं ये ट्रैक करते हैं शुरुआत इस प्रोग्राम की इस गीत के साथ।

वेलकम बैक है जी। तो दोस्तों, वैसे भी ना सुबह सुबह कुछ शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले कर्टन हटाते हैं और देखते हैं वही आज का मौसम कैसा है। तो वही मौसम की अपडेट मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज ब्रिस्बेन में हल्का जो ठंडा मौसम रहने वाला है, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अब दिन भर हल्की धूप के साथ साथ जी वेदर तो प्लेजेंट रहने वाला है, तो आपने जो करना है ना कर लीजिए। आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, इस गीत के साथ आइए फिर फटाफट नजर मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ हाइलाइट्स पे। क्वींसलैंड में रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन को और भी मजबूत बनाया जा रहा है दोस्तों। अथॉरिटीज ड्राइवर से स्पीड लिमिट्स फॉलो करने और सीट बेल्ट जरूर लगाने की अपील की गई है। वहीं पर अगर आपको बताएं तो ऑस्ट्रेलिया भर में डिजिटल स्कैम, जैसे हमेशा मैं बता रही हूँ, इसका अवेयरनेस को लेकर रोज न्यूज आती है कि अलर्ट रहें, सस्पिशियस कॉल्स या फिर कोई भी लिंक है उसमें क्लिक ना करें। वहीं पर दोस्तों ब्रिस्बेन सिटी में कई कम्युनिटी इवेंट्स और विंटर एक्टिविटीज जो है इस वीक ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। फैमिली इसके लिए वीकेंड में काफी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे दोस्तों। वहीं पे बॉलीवुड में कई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा रहे हैं जो कि सबका इंतजार खत्म करने वाले हैं। वहीं पर अगर साउथ इंडियन सिनेमा की बात करें तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान और मजबूत बना रहा है। तो आइए इसी के साथ हम मजबूत बनाते हैं अपना ये कार्यक्रम। इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी, जाइए कहीं भी मत, क्योंकि लौट कर आ रही हूं बहुत सारी अपडेट्स लेकर।

वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रसवानी में। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी में प्रोग्राम चाने का सफर, और जहाँ पर जी इतनी सारी बातें हो गई वहाँ पर चाने इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ना दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट रेलवे लाइन है। हाँ जी, कोई कर्व नहीं है, वो लगभग 478 किलोमीटर तक बिना किसी कर्व के चलती है। जी हाँ, यानी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रेट रेलवे लाइन है। तो आइए, इसी के साथ हम आपको लाइन में नहीं लगाएंगे, हम सुनाएंगे आपको ये गीत ऑनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

वेलकम बैक टू रेडियो बिस्वानी में। तो आइए दोस्तों, अपनी नजरों को हम पूरी दुनिया में जरा घुमा लेते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में तेजी से बढ़ रहा है जी, जिससे कई काम पहले से ज्यादा आसान और एफिशियंट हो रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स जो है, वो लोगों को प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने और फिर रिसाइकलिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की सलाह भी दे रहे हैं, जिसमें हमको भी गौर करना जरूरी है। तो आइए इसी के साथ बैठते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो बिस्वानी।

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते ना थ्रिलर और फैमिली एंटरटेनमेंट कैटेगरी में इतने नए शोज आए हैं ना, मतलब इतने नए शोज जो है वो रिलीज हुए हैं जिन्हें ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप भी जाके ओटीटी प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं और जो पसंद आए ना आप देख सकते हैं। आई होप आपको भी पसंद जरूर आएगा। वहीं पे दोस्तों, स्पोर्ट्स कॉर्नर में जरा हम घुस जाते हैं और आपको बताते हैं कुछ कुछ अपडेट्स। क्रिकेट और फुटबॉल फैंस के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट का एक्साइटमेंट बना हुआ है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स जो है वो भी अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं और देश का नाम जो है रोशन कर रहे हैं। तो क्लैपिंग तो बनती है भाई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रह्मानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो दोस्तों, जहाँ मैंने इतनी सारी बातें की ना, तो मैं बैठ के सोच रही थी, हम हमेशा मोटिवेशन की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है इंसान की लाइफ में, इंसान की जिंदगी में कभी कभी डीमोटिवेशन आ जाता है। हम खुद को, कुछ बात को लेकर हम इतने ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपने आप को डीमोटिवेट करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये काम तो पॉसिबल है ही नहीं, अब तो ये कुछ होने ही नहीं वाला, हम हार मान जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी अपने सपनों को ना छोटा मत समझिए। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और अगर आज का दिन आपके प्लान के मुताबिक ना भी चले ना, तो हिम्मत मत हारिए। हर नई सुबह एक नया मौका लेकर जरूर आती है, एंड डेफिनेटली आपके लाइफ में भी जरूर लेकर आएगी। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो इसी के साथ इतने प्यारे प्यारे गीत सुनने के बाद, और ये डेफिनेटली सफर जो है आपका बेहतरीन जरूर बनाया होगा, कोशिश पूरी थी मेरी, तो इसी के साथ दोस्तों मुझे अब दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके दोस्त होस्ट आरजे जानी जैन, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। मुस्कुराते रहिए, सेहत का ख्याल रखिए और हर दिन का पॉजिटिविटी के साथ स्वागत जरूर करिए और जिए जरूर। कल सुबह फिर मिलेंगे नए जज्बे, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी और ढेर सारे फ्रेश अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मोजस्बा या खुमैनी के पोते, ईरान में नया पावर सेंटर कौन होगा? ईरान में मोजस्बा खामनेई को लेकर शंकाओं के बीच बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मिडल ईस्ट के इस देश में नया पावर सेंटर उभर कर सामने आया है। इस्लामी क्रांति के जनक आयातुल्ला खुमैनी के पोते अली खुमैनी को इस्लामी फ्रंट का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहली बार किया सी ड्रोन का इस्तेमाल। अमेरिकी सेना ने ईरान में पनडुब्बी और जहाज के रखरखाव के सेंटर पर हमला किया है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि सेना ने कई ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इन ठिकानों पर हमले किए। सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान में पनडुब्बी और जहाज के रखरखाव की सुविधा पर भी सफलतापूर्वक हमला हुआ है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। 26/11 जैसी एक और साजिश, पानी के रास्ते घुसपैठ, मार्शल आर्ट्स और AI, LET के अपग्रेड से बढ़ी भारत की चिंताएं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अक्सर भारत में अशांति फैलाने के लिए साजिशें रचते रहते हैं। इसी बीच भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें पता चला है कि लश्कर ए तैयबा अपने कैडर को कई नई स्किल्स सिखा रहा है, जिनमें मार्शल आर्ट्स, पानी के रास्ते घुसपैठ और यहां तक कि AI भी शामिल है। एक वीडियो में लश्कर ए तैयबा के कमांडर राणा मोहम्मद अशफाक, जो भारत के सबसे ज्यादा वांटेड आतंकियों में से एक हैं, उसको स्विमिंग पूल में जाते हुए देखा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया है कि अशफाक की देखरेख में संगठन के आतंकियों को पानी के रास्ते घुसपैठ और बाहर निकलने, मुश्किल हालात से निपटने और स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपने अदालत को गुमराह किया, समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय रैना ने अदालत को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गॉट लैटेंट विवाद पर समय रैना को अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रैना ने कोर्ट को घुमा रखा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समय रैना किस तरह के यूथ आइकन है, ये सोचकर चिंता होती है। आइए जुड़ते हैं खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। एलिस्टर कुक की शर्मनाक लिस्ट में शामिल हुए जैकब बेंथल। इंग्लैंड के बल्लेबाज जैकब बेंथल का नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। बेंथल के नाम ये रिकॉर्ड भारत के खिलाफ मर्गिंगम में खेले गए पहले वनडे मैच के बाद जुड़ा। बेंथल ने भारत के खिलाफ पहले मुकाबले में पारी की शुरुआत करने का मौका हासिल किया था, लेकिन वो भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते रहे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: I hope you enjoyed that one.
1: Oh, yeah, I love this song. Mm.
0: I wasn't talking to you. I was talking to our listeners.
1: Okay. All right. I'm sure they loved it, yep.
0: It's a nice, happy song.
1: Talking about Christmas. Christmas in July, 100 of Santas gathered for the annual World Santa Congress, bringing festival cheer in the middle of summer. Imagine seeing dozens of Santa Claus walking around 30 degrees centigrade. Well, our Santa Claus do. You know, it's during the hot weather we have Christmas here, isn't it?
0: Mm.
1: Yeah. Talking about that, I think I did mention yesterday the Tiaro, the city, the town that I was in. It has a shop there, a Christmas shop, that's open 12 months. You know, you can go anytime there. The Christmas spirit is there.
0: Mm.
1: It's decorated here. And, yeah, so... And it's a wonderful place. And the 780 people in there. Okay, I got a call coming. I see what is this about. I think Suresh Pandit is calling me. Maybe I'll have to bring him on air. Pandit ji, namaskar. Aap air pe hai.
2: Namaskar, Jati ji.
1: Namaste ji.
2: आप भी कुछ सफर करके आए हैं, कुछ समाचार दे रहे
1: हैं? अभी आया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ आहिस्ता
2: आहिस्ता। जा रहे हैं।
1: दो स्टेप आगे जाता हूँ, फिर एक स्टेप पीछे।
2: चलो
1: जी, हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ।
2: अच्छा जी, तो किधर है? नॉर्थ की साउथ है
1: जी?
2: नॉर्थ ऊपर जा रहा
1: हूँ। नॉर्थ जा रहा हूँ,
2: नॉर्थ जा रहा
1: हूँ, ठंड से दूर जा रहा हूँ थोड़ा। जी हाँ,
2: जी हाँ, उधर तो टेम्परेचर और अच्छा है।
1: मैं जहाँ तक मैं जाऊँगा, जहाँ तक नारियल ना मिला तब तक मैं चलता जाऊँगा।
2: नारियल
1: के खोज में हूँ मैं।
2: रोकेंटन से मिलने लगेगा
1: जी।
2: बंदा बेग रोकेंटन
1: जी। हाँ, अभी तो मैं यहाँ हूँ चिल्ड्रंस में, बस अब आगे थोड़ा। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो फिजी की तरह ट्रेन गन्ना को धो रहा है, ये सब हो रहा है, देखिए बड़ा अच्छा लगता है जी। बड़ा सुंदर सा टाउन है चिल्ड्रंस।
2: देखेंगे अगले कोई ट्रिप होगा तो हम लोग सब चार लोग साथ हो जाएंगे।
1: साथ हो जाएंगे, शुआ शुआ,
2: एक मिनी बस या कुछ ले
1: जी। हाँ,
2: तो अपना टेंट लो, जहाँ जाओ गन्ने के खेत में लगा लो टेंट,
1: गाते चलेंगे, हवन करते चलेंगे
2: जी।
1: सुनाइए पंडित जी, क्या है
2: जी? सुन रहे
1: जी,
2: तो हम एक छोटा सा सामाजिक सूचना है
1: जी,
2: कि सनातन धर्म अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कर रहा है
1: जी।
2: जो मेंबर हैं और जिनका रुचि है सनातन धर्म में या हिंदू संस्कृति में, तो जरूर जो मेंबर हैं उनसे मांग है कि आप पता लगाएं और देखें कि क्या क्या क्या जरूरी है, क्या हमें चेंजेस करना चाहिए अपने संस्था को आगे बढ़ाने में, उसको मजबूत बनाने में जी।
1: सही बात, सही।
2: तो यही एक सूचना है, जो सुन रहे हैं मेंबर दूसरे से पता लगाएं, सेक्रेटरी जी से पता लगाएं और या कमिटी मेंबर से पता लगाएं कि क्या चेंजेस हो रहा है उनमें, उनका भी साथ हो तो अच्छा होगा।
1: ठीक है, चलो। और साथ साथ में मैं सुनने में आया है कि कोई कुछ एक तरह का भजन कंपटीशन या भजन कुछ होने जा रहा है
2: जी? बहुत कुछ हो रहा है अभी, देखो दो तीन भागवत कथा हुआ, फिर अभी दो दिन का इंद्रेश जी का हुआ, तो ऐसे चलता रहेगा ना।
1: हाँ, तो चलना भी चाहिए, जब तक हम है तो चलना तो पड़ेगा
2: जी। तभी तो बनाया जगह स्थान को बनाया गया है कि उसको काम में लाया जाए
1: जी,
2: और अपना जो संस्कृति है, भाषा है, उसको हम कायम रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ए बड़ी अच्छी बात है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और हाँ, थैंक यू
2: जी, आपका यात्रा भी ठीक रहे।
1: थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।
2: अच्छा जी, धन्यवाद।
1: अगर आपका ब्लेसिंग है तो क्यों नहीं होगा, सब ठीक होगा
2: जी। होगा जरूर जरूर, सबका ब्लेसिंग साथ साथ है।
1: धन्यवाद,
2: क्योंकि जितने लोग रेडियो सुनते हैं सबका ब्लेसिंग आपके साथ है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
2: धन्यवाद जी,
1: ये लाइफ लॉन्ग ड्रीम है, कर लूं मालूम नहीं फिर आगे कर पाऊंगा
2: जी। जी जी, हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं
1: है जी। हाँ
2: जी,
1: चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू पंडित जी।
2: धन्यवाद,
1: नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, पंडित जी सब कुछ बातें सुन रहे थे, और ये जो है, आप अगर मेंबर है तो आप जाइए इस पर और हाथ बटाइए, ठीक है? ओके,
0: चलो अगला गीत सुनते हैं। यू मेंशन्ड what you said, a bhajan competition.
1: Yeah, there's the one coming. Brisbane is supporting it. Well, of course we support things like that. Why not?
0: Okay.
1: हमारा तो काम है आप तक पहुंचाना सब कुछ.
0: I see it's on the 28th of August.
1: Yep.
0: 6:30 p.m.
1: कहाँ पर होने को, do you know?
0: Logan West Community Hall, Wine Glass Hall in Hillcrest.
1: Wine Glass Hall.
0: Yeah, I wonder. So how does this work? I think I know where it is. I mean, do they already have all the people that's competing?
1: I think it's between two people. Just two people having
0: a... two people. Yeah. So, okay, I get it. Ah, nice.
1: And it's more of a reason of people getting together too, you know.
0: Yes. So 28th of August, it's a Friday evening. Your ticket price is only $20 per person.
1: Yes, yeah.
0: And that actually includes food.
1: Yeah, it's
0: Hang on, car and snacks will also be on sale.
1: Yeah, but otherwise the food.
0: Yep.
1: And
0: food
1: the
0: is
1: hall,
0: included
1: and
0: in your
1: the traveling
0: $20.
1: Express.
0: Yes.
1: Yeah. That's why there's a small fee.
0: Hang on. Should I give the coordinator's number in case anybody wants tickets?
1: Why not? Yeah.
0: Okay, so event coordinator is Arvin, and the number is 0452-584-926.
1: Okay.
0: So come and enjoy a wonderful evening, a nice,
1: A nice evening, nice bhajan.
0: Nice evening.
1: And it will be getting a bit warmer then, won't it?
0: Yes. By then, that's the last month of winter, so that will definitely, days will be coming
1: very pleasant
0: longer,
1: weather.
0: Brighter for longer, and slightly warmer.
1: Yes.
0: So, on that note,
1: chalo.
0: Seeing that you mentioned this, I want to play it.
1: Howard Karenge, please play Howard Karenge.
0: Okay, I will.
1: Oh, that's what's playing.

0: Oh, yes. Okay. Panditji wants to know. Pandit Anand wants to know. When is the Hawan at 1701? Good idea, eh? Okay, I don't think you are. Did you put your mic off? Just check your mic, please.
1: Oh, I said सॉरी पंडित जी. हाँ करेंगे अभी तो, इसलिए तो निकला हूँ ना अपना सब जो मंत्र वगैरह अच्छा से थोड़ा और कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, तो फिर बैठकर हवन करेंगे. हवन करेंगे हम, है कि नहीं?
0: बिना
1: इसीलिए
0: सेवन
1: बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा पंडित जी, बहुत टाइम लगेगा. शायद इस जन्म में नहीं हो पाएगा. अच्छा देखो, फिनलैंड में फिनिश सुपरमार्केट्स कि देखो क्या क्या आइडियाज लोग लेकर आते हैं. फिनिश सुपरमार्केट्स हैव लव बास्केट्स, यू नो दैट, प्यार वाला बास्केट. सम ग्रोसरी स्टोर्स इन फिनलैंड इंट्रोड्यूस पिंक शॉपिंग बास्केट्स फॉर सिंगल्स, राइट? प्रोबली हु आर
0: ओके
1: रेडी टू मिंगल, आई डोंट नो. इफ यू आर कैरिंग वन, इट्स अ जेंटल सिग्नल that you are open to meeting someone while shopping. What a brilliant idea. The internet has dubbed it speed dating with vegetables. कुछ लोग हैं जिनका अप्रोच करना प्रॉब्लम होता है ना, यू
0: यस
1: नो व्हाट आई
0: यस
1: मीन.
0: यस
1: सो दिस बास्केट विल प्रोबब्ली से इट ऑल.
0: मेबी इट्स लाइक अ सटल वे ऑफ मीटिंग पीपल
1: Yeah, but like, you know,
0: बट
1: how do
0: देन
1: you meet?
0: दे नो
1: Now,
0: ओके
1: अच्छा,
0: आई
1: हाँ,
0: हैव दिस
1: हैंग ऑन, हैंग ऑन,
0: या
1: हैंग ऑन, हैंग ऑन, हैंग ऑन. जोक्स अपार्ट, देर आर सम पीपल हु आर वेरी लोनली. दे डोंट नो हाउ टू फाइंड अ पार्टनर, व्हाट टू से,
0: ओ
1: व्हाट नॉट
0: यस
1: टू
0: यस
1: से.
0: या डेफिनेटली
1: सो दिस इज प्रॉब्ली वन वे ऑफ फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर और समबॉडी दैट यू कैन शेयर योर लाइफ विद, यू नो. यू नो व्हाट आई एम सेइंग?
0: And if that doesn't work out, you may just only make a
1: Well, if it
0: friend.
1: doesn't work out, it doesn't
0: You
1: work
0: may just make
1: out.
0: a new
1: यहाँ तो
0: friend.
1: शादी करके भी लोग नहीं वर्क आउट हो पाते हैं,
0: Yeah, true.
1: है कि नहीं?
0: Yep, absolutely. But that's such a nice idea, actually. That, in a way, that's saying, okay, I am open to meeting someone.
1: That's
0: So
1: right. That's so
0: basically,
1: you without saying it.
0: Men or women
1: The
0: can carry
1: message.
0: this pink basket.
1: Yeah, single.
0: Single.
1: Yeah, and if you're ready to mingle. He did say that, I said that.
0: If you're ready to mingle,
1: What's going
0: yes.
1: on with me today?
0: I have no clue, but I have a request. Okay, so I'm going to
1: Oh,
0: play
1: have
0: this.
1: you?
0: I do. Okay,
1: Okay.
0: Vinny,
1: Bada do.
0: this one's for you.
1: For me?
0: For Vinny.
1: Okay, for Vini. Okay, all
0: Yeah.
1: right.
0: Why is it not playing? Guy.

0: और देखिए दोस्तों, इफ टुडे इज नॉट गोइंग एज प्लान्ड, अगर सही नहीं चल रहा है आज आपका दिन, तो आप याद रखिए जीपीएस से इज रिकैलकुलेटिंग, सो कैन यू।
1: Say that again.
0: तो
1: GPS says what?
0: रिकैलकुलेटिंग, डिड यू हियर रिकैलकुलेट?
1: Rerouting and recalculating.
0: या सो कैन यू? ओके,
1: So can
0: सो
1: you?
0: जस्ट मैटर, कभी अच्छा चलता कभी नहीं। देखो मंडे को अच्छा चला था, कल थोड़ा इधर उधर हुआ, आज भी ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम। और आज हम वेंसडे है, तो आज जो वेंसडे है थोड़ा कुछ हमारा मूड कुछ पता नहीं
1: बदलते. या
0: रहता।
1: इट्स फनी हाउ कम ऑन अ वेंसडे वी हैव अ टोटली डिफरेंट मूड. ए डू यू थिंक वी आर लुकिंग
0: या दिस
1: फॉरवर्ड
0: ट्रू।
1: टू द वीकेंड? मे बी इट्स हम्प डे.
0: I have no idea. I don't know, but it is that way. It
1: इट
0: happens.
1: हैपन्स दैट वे एवरी
0: It
1: सिंगल
0: happens.
1: वेंसडे.
0: चलिए एक बार फिर। हाँ, सॉरी
1: वैसे
0: सॉरी,
1: इवन
0: आज
1: पंडित
0: देर से
1: जी,
0: डिले।
1: इवन पंडित जी इज इन अ जॉली मूड ऑन अ
0: ओके ओके, इफ पंडित जी इज अ जॉली मूड, वी कैन प्ले हिज फेवरेट।
1: Of
0: ओके,
1: course,
0: बट
1: why not?
0: आफ्टर दिस आफ्टर आई जस्ट व्हाट आई वांट टू
1: Right
0: से।
1: now, right now.
0: ओ, आई वाज गोना से समथिंग।

0: मैं जानता हूँ वेंसडे को हम थोड़ा कुछ फनी वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि किसी की हेल्प करने के लिए पैसा नहीं, बस एक अच्छा दिल चाहिए, है कि नहीं? खुश रहना भी एक आदत है, तो आज से ही आदत को अपना लीजिए। कुछ लोग हैं जो हमेशा आई नो प्रेशर्स होते हैं, खुश होना तो नामुमकिन है, बट नहीं, ऐसे बात नहीं है। इफ यू लुक ऑन द ब्राइट साइड यू विल फील अ बिट ब्राइटर। तो है सब कुछ, टेंशन वगैरह तो सबके ऊपर रहता है दोस्तों, लेकिन यू विल बी एबल टू डील बेटर विद इट अगर आप खुश रहे, ठीक है? तो ये बात आप हमेशा याद रखें, और हाँ, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, और याद रखिए हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, और इन बात को आप याद रखें दोस्तों, ठीक है? तो बी हैप्पी। आई नो समटाइम मेंटली लोग हैप्पी नहीं रहते हैं, कुछ हमारा केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है, इन सब रीजन से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन देर आर वेज यू कैन फाइट इट, यू कैन गेट हेल्प, ठीक है? कभी कोई यार दोस्त से मिलकर बातचीत कर लिए तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो यू नो डू थिंग्स, बी एक्टिव। और कुछ लोग हैं जो शायद एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं, और हमेशा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस होते हैं। डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, चलना, एक्सरसाइज करना, ये सब आपको आपको अपने आप को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा ये सब करने के लिए। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल फील गुड। एंड एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल इज अ वेरी बिग डिप्रेसेंट, ओके? डोंट डोंट टेक। थोड़ी देर के लिए आपको शायद कुछ कर देगा, फिर उसका इफेक्ट बहुत बुरा होता है। तो कीप दोस थिंग्स इन माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं।
1: Okay, I'll play a song.

दोस्तों, लग रहा है कि हम मंजिल के करीब आ गए हैं, ऑलमोस्ट देयर। तो ऐसे जब बात है, एक गाना मैं बजाना चाहूंगा, ठीक है? और कौन सा गीत है, चलिए, एक बहुत पुराना भी नहीं, बहुत नया भी नहीं है, चलो शायद आपको अच्छा लग जाए।

0: Well, it wasn't a bad, it was a good song, wasn't it?
1: It slowed my heart rate right down.
0: That's good, because we need to slow down a bit now. Yeah, you need to learn to relax a bit.
1: Hey, I was relaxed. I was just having fun. Okay, I'm more than
0: relaxed.
1: Yeah,
0: that's all right. That was a lovely song, I think.
1: It is. Nothing's wrong with the song.
0: Nice, soothing
1: song. It's a beautiful
0: song.
1: Yeah.
0: Okay, ab yahan se hame jaane ka waqt hua hai, dosto. और आपको याद दिला दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आपको जाएंगे सताक्षी के साथ और फिर 11 बजे से आप हो जाएंगे निविया के साथ, नहीं संदेश के साथ, और फिर आप निविया के साथ होंगे रात शाम को 3 बजे से. ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों. और सब तो ठीक चल रहा है. और आज मैं यहाँ रुका हूँ, कल सुबह निकलूँगा. देखता हूँ अगर मौका मिला तो मैं कुछ वीडियो यहाँ जो छोटा सा टाउन है उसका वीडियो उतार कर कुछ फेसबुक पर रखूँगा. ठीक है दोस्तों, यू कांट मिस द प्लेस इफ यू गोइंग ऑन M1. आई थिंक इट गोज राइट थ्रू दैट टाउन, यू नो.
1: या द मेन हाईवे, इट गोज थ्रू द
0: मेन हाईवे, राइट.
1: यू आर टॉकिंग अबाउट Childers, राइट?
0: या Childers,
1: यस
0: राइट थ्रू इट, या. सो आप लोग, बहुत से लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आई एम श्योर. सो एनी वे, नाइस टाउन. बट क्या होता है कि कभी हम इसे रुक कर देखते नहीं है बहुत ना, चलते चले जाते हैं. वाइल आई एम स्टॉपिंग एंड लुकिंग एट थिंग्स दैट यू प्रॉब्ली विल मिस आउट, यू नो. तो एनी वे, अपना ख्याल रखेगा दोस्तों. मैं यहाँ से जा रहा हूँ. अमिता, लिव इट टू यू प्लीज, एंड ऑल द बेस्ट. एंड वट एल्स, यू got something?
1: I do have something, but okay.
0: Yeah. But what?
1: It's not a long enough song to finish with. So, do you have any other funny thing to say before we go?
0: Oh, funny things to say. What funny thing should I say?
1: I don't know. You've been having lots of funny things to say all morning.
0: Okay.
1: It's okay. It's no, it's fine. Maybe save it for tomorrow. No. We'll say goodbye. We'll say
0: namaste.
1: Found
0: something. Looks like you found something.
1: No. I have a song. I'm not saying I don't have a song. Yeah. I have a song. But okay, so.
0: Oh, anyway, so from my side, that's all for now.
1: Yep.
0: Take care, stay safe, and keep smiling.
1: And
0: we'll catch you tomorrow.
1: My side.
0: Thanks for tuning in. Wishing you a wonderful day ahead. Until next time, goodbye. Was that good enough?
1: Not goodbye.

0: जुड़ी नशे सी चढ़ गई।
1: कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा बोले। जी हाँ, कलियों के घूंघट खुल गए हैं। और देखिए, सिर्फ कलियों ने घूंघट नहीं खोले हैं, भंवरे नहीं बोल रहे हैं भाई, एक नई सुबह दस्तक दे चुकी है हम सबकी जिंदगी में। जी हाँ, और ये नई सुबह, ये नया आगाज है आपके सपनों का, आपके अरमानों का, और आपके बीते दिन के जो फेलियर्स थे उन्हें भुलाने का, क्योंकि आज आगाज है नया। और अंदाज भी बिल्कुल नया रखिए, अपने आप को सजाइए, संवारिए और बेहतर बनाइए, और बताइए दुनिया को कि आप बहुत स्पेशल हैं और जो कल नहीं हुआ वो आज जरूर हो सकता है। तो चलिए इसी बात पर शुरुआत करते हैं ठापंस की रेडियो प्रस्वानी 1701 पर, और आगे बढ़ते हैं अगले ट्रैक के साथ।

अटेपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर दोस्तों, आपके साथ साक्षी है और गुड मॉर्निंग कहूंगी एक बार फिर से आपको भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ उनके लिए भी दिन बहुत ही खास है जिनके लिए आज का दिन स्पेशल है। जी हाँ, जन्मदिन जिनका है भाई, आज बर्थडे बेबीज हैं, आज के दिन उनका बर्थडे है और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम विश करेंगे, तो भाई हम कैसे ना विश करें। तो भाई जो भी आज इस दिन के हकदार हैं यानी जिनका जन्मदिन है, उन सबको जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। खिलते रहें आप, मुस्कुराते रहें आप, गुनगुनाते रहें आप और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहें आप। जी हाँ, किसी भी मोड़ पर जिंदगी के थकिएगा नहीं, हारिएगा नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते जिंदगी के हर फेस को पार करते रहिए। जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो और ये दिन ना सिर्फ आज बल्कि पूरी उम्र आप यूं ही सेलिब्रेट कर पाएं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए आप जिंदगी के सफर को एंजॉय कर पाएं। इसी विश के साथ विश करूंगी उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आइए एंजॉय करते हैं मिलकर यग्रा ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रिजु प्रस्वानी 1701 एम पर। आपने डिज्नी लैंड के बारे में सुना है, डिज्नी वर्ल्ड। हाँ, उसे बनाने वाले डिज्नी वर्ल्ड एक्चुअली जब वो बन रहा था या जब बनकर तैयार हुआ तो वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो ही दुनिया छोड़ गए थे। जब उसका इनॉग्रेशन था तो एक रिपोर्टर ने उनके भाई से पूछा कि आपको तो बड़ा दुख होगा कि आज आपके भाई जिन्होंने ये सब कुछ बनाया इसके इनॉग्रेशन को देखने के लिए वो यहाँ इस दुनिया में नहीं है, वो देख ही नहीं पाए कि कितना खूबसूरत है। तो उनके भाई ने तुरंत उस रिपोर्टर को रोका और कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, अगर मेरे भाई ने ये सब कुछ देखा नहीं होता तो ये बना ही नहीं होता। यू नो, अपनी लाइफ को इमेजिन करना, उसे देखना, उसे विजुअलाइज करना, ये होता है आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी इस बारे में सोच पाना। तो अपनी लाइफ को अगर आप एक विजुअलाइजेशन के थ्रू इमेजिन कर सकते हैं तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। वो चीज़ें भले ही लाइफ में कभी कोई सोच ना पा रहा हो, कभी किसी ने देखी ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो सकती हैं और डिज्नी वर्ल्ड इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो चलिए फिलहाल आपको आगे लेकर चलते हैं, आपके सपनों और विजुअलाइजेशन के नाम सुनते हैं ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी आपके साथ सताक्षी है।

किसी ने मुझसे पूछा कि सताक्षी तुम मॉर्निंग शोज करती हो तो ये बताओ तुमसे ज्यादा बेटर तो कोई और बता नहीं सकता। जब वेट इंक्रीज हो यानी वजन बढ़े तो क्या करें? अब देखिए मैं जानते ना अब हाँ कि भाई बात को सीधे तरीके से नहीं कहती, हर बात को बहुत ज्यादा डीपली सोचती हूँ फिर उस पर बात करती हूँ। तो मैंने कहा कि देखो भाई अगर बॉडी का वजन बढ़ रहा है, बॉडी का वेट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सरसाइज करो, अगर मन का वेट इंक्रीज हो रहा है तो भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और भाई अगर अच्छा कमा रहे हो और वजन जो है वो धन का बढ़ रहा है तो दान करो, लोगों को दे दो, जिन्हें जरूरत है उन्हें जितनी हेल्प कर सकते हो करो। इस तरह से मन की शांति भी मिलेगी, बॉडी का वेट भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा और खुशी जो है वो चेहरे पर बनी रहेगी, एक अजीब सी चमक आएगी। जब आप किसी की मदद बिना किसी लालच के करते हैं, आपके अंदर कोई ग्रीड नहीं होती कि यार इससे मुझे ये फायदा होगा, वहां पर जो हेल्प है वो आपके चेहरे पर नजर आती है। तो बस वो सोशल मीडिया आजकल तो सबसे भाई सबसे ज्यादा लोगों को लालच क्या है, सोशल मीडिया पे पिक्स अपलोड करने का, है ना। हाँ तो वो पिक्स जो है वो जरा सोच समझ के अपलोड की जाए, है ना। हाँ कि किसी तरह का प्रमोशन ना हो जब आप किसी की हेल्प कर, बस ये ध्यान रखिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए, एनएसटी ट्यून रेडियो ब्रिस्वानी।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
2: वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं। आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। यू नो, लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब आपके लिए खड़े होते हैं या जब आपके किसी सक्सेस पर, छोटी सी सक्सेस पर भी तालियां बजाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि ये पूरी दुनिया आपके लिए क्लैप कर रही है, ताली बजा रही है। जब आप जीतते हैं तब तो दुनिया नाश करती है, दुनिया आपको कहती है कि यार मुझे तुम पे प्राउड है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये आपकी कोशिश पे प्राउड फील करते हैं। आप जब गैर मौजूद हो तब ये आपके लिए लड़ते हैं, दिखावे के लिए हैं, तो ऐसा फील होता है कि ये पूरी दुनिया आपके लिए क्लैप कर रही है, ताली बजा रही है। जब आप जीतते हैं तब तो दुनिया नाश करती है, दुनिया आपको कहती है कि यार मुझे तुम पे प्राउड है। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये आपकी कोशिश पे प्राउड फील करते हैं। आप जब गैर मौजूद हो तब ये आपके लिए लड़ते हैं, दिखावे के लिए नहीं। ये आपसे इतना प्यार करते हैं।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर. यू नो, जरूरत का सामान जब आप खरीदते हैं तो जरूरत के सामान से इंसान घर भरता है ना. हाँ, कि जरूरत है जिस चीज की उसे हम घर में ले आए. लेकिन बेकार की चीजें जब आप खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती तो उनसे आप मन भरते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग और लॉजिकल बात है, सोचिए. और आगे ये कहना है कि देखिए कि थोड़ी सी आजादी दीजिए अपने आप को. कभी कोई बुक, कभी कोई प्लांट, कभी कोई पोस्टर यूं ही खरीद लीजिए बिना जरूरत के. क्योंकि पता है जरूरतों से हम जिंदगी बनाते हैं, लेकिन ये बेकार की जो चीजें हैं ना उनसे जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं. तो इसलिए कभी जरूरतों से हट के भी जिस चीज पर मन आ जाए, जिस चीज का ख्याल आ जाए, उसे भी ले आइए. सताक्षी के साथ इट हैपेंस रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर.